जी हाँ, इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रीजू ब्रिस्वानी 1701 एम पर। और इसके पहले कि इट हैपेंस में हम और आप आगे बढ़ें, विश कर देते हैं उन्हें जिनके लिए ये पल ये दिन बहुत ही स्पेशल और खास है। तो भाई जिनका हैप्पी बर्थडे है, आज जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। और इस बर्थडे विश के साथ ही ये विश भी करूंगी

गानों की हैट्रिक आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ, और गानों की हैट्रिक में आइए आपको आगे लेकर चलती हूँ एक और ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

सोनाक्षी के साथ इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं गानों की हैट्रिक। गानों की हैट्रिक में एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और यूं ही सुनते रहिए ये मॉर्निंग वाला प्यार भरा साथ। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्थानी 1701 FM।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

हे वेलकम बैक रेडियो प्रस्थानी पर, आप एक बार फिर से हैं आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। और मॉर्निंग की शुरुआत अगर एक बढ़िया सी मुस्कुराहट और गर्मा गर्म कॉफी या चाय के साथ हो तो आधा दिन तो वैसे ही सेट हो जाता है। और किसी ने क्या खूब कहा है ना कि कल का दिन चाहे जैसा भी था बीत गया, आज का सूरज आपके लिए उम्मीदों की एक नई पोटली लेकर आया है। आज जब आप अपने काम के लिए घर से निकलें या घर पर ही अपने दिन की प्लानिंग करें तो चेहरे पर वो छोटी सी स्माइल जरूर रखिएगा, क्योंकि आपकी एक स्माइल सामने वाले का दिन भी बदल सकती है। तो चलिए इस स्माइल को जरा और बड़ा करते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर।

हैपेंस सुन रहे हैं आप, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग रेडियो प्रस्थानी पर, आप हैं सताक्षी के साथ। तो भाई जो हमारे लिसनर्स, जो हमारे दोस्त, जो हमारे फ्रेंड्स इस वक्त पार्क में वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं या जिम में पसीना बहा रहे हैं, उन सभी को मेरा हैट्स ऑफ। जी हाँ, सुबह की ये जो फ्रेश एयर होती है ना, ये हमारे लंग्स के लिए नहीं बल्कि हमारी सोच के लिए भी एक रिफ्रेश बटन की तरह काम करती है। और आपका बहाया गया ये पसीना आपकी हेल्थ को और बेटर करता है। तो चलिए अपने वर्कआउट को थोड़ा सा धीमा कर दीजिए, क्योंकि एक बढ़िया सा गाना भी आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ। जी हाँ, लेकिन अपने हेडफोन का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। आइए आगे लेकर चलती हूँ आपको इस अगले ट्रैक के साथ। सुनते रहिए सताक्षी के साथ, इट हैपेंस रेडियो प्रस्थानी।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

रेडियो पर स्थानीय पर सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस, आपका अपना ब्रेकफास्ट शो। एक बार फिर से आप सबको वेलकम बैक। दोस्तों, सुबह का ये वक्त खुद से बातें करने का सबसे अच्छा वक्त होता है। कभी कभी हम दूसरों से वैलिडेशन ढूंढते हैं कि कोई आकर हमसे कहे कि तुम ये कर सकते हो, पर सच बताऊं, जब तक आप आईने में देखकर खुद से नहीं कहेंगे कि बॉस तुम जीनियस हो और आज के दिन तुम रॉक करने वाले हो, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती है। गलतियां कल भी हुई होंगी और मुश्किलें आज भी आएंगी, पर आप उन सबसे बड़े हैं, है ना? तो चलिए आपके इसी जज्बे को सलाम करते हैं और प्ले करते हैं एक और गाना रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर। आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ इट हैपेंस।

अच्छा आप एंजॉय कर रहे हैं आप सदाक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर, जहां आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को इस वक्त आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। एक नई सुबह के साथ एक नई शुरुआत और कुछ बेहतरीन गाने। भाई सुबह के इस बहुत ही पोलाइट टाइम में, या हम कहते हैं ना पहर, हाँ दिन में कितने पहर होते हैं, 4 पहर होते हैं और ये पहला पहर है। तो भाई इस वक्त हम जो गाने सुनते हैं वो सिर्फ गाने नहीं होते, वो एक टाइम मशीन बन जाते हैं। हमें याद आता है वो दौर जब पापा सुबह सुबह ट्रांजिस्टर चालू कर देते थे, रसोई से माँ के बर्तनों की खौलती हुई और इलायची वाली चाय की खुशबू आती थी। वैसे देखा जाए तो उस चाय में भी कितना सुकून था ना, कितनी सादगी से भरी हुई। आज की भागदौड़ जिंदगी में वो सब हम भूल गए हैं, लेकिन देखा जाए तो भागदौड़ भले ही बढ़ गई हो पर वो सुकून कहीं गया नहीं है, वो आज भी तो हमारे अंदर है। और उसी सुकून को भागते दौड़ते इस वक्त के साथ थोड़ा सा थामते हैं और डूबते हैं खुद के साथ, थोड़ा सा वक्त खुद के साथ बिताते हैं भाग दौड़ वाले काम करते हुए भी। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ।
1: ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆਏ ਹਾਂ।
0: ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਇਹ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ।
2: ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਅੱਜ ਮੱਥੇ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੇਰੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆ।
0: ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ।
3: ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗੇ।
4: ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋ ਲੋ, ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮੂਵੀ ਮਿਸ ਕਰ।
0: ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਨਾ ਆਵੇ।
3: ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਕਫਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
4: ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
5: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
6: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन, बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो या फिर जिस किसी संस्था या विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
7: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज, स्टार्ट बैंकिंग लाइक अ लोकल विद ANZ, वी आर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट बैंक्स एंड वी आर चोजन बाय मिलियंस। For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
6: Queensland di navi sarkar Brisbane layi vadde kam pure kar rahi hai. Assi 50 cent de kiraye pakke taur utte lagu kar ditte han. Assi hor vi vadde doctor muhaiya karwa rahe han ate Prince Charles ate Royal Brisbane warge hospitalan vich vadde sudhar lya rahe han. 1600 hor police karmi ate hor sakht kanoon lya rahe han. ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੁਐਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
8: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रीज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रीज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 107.1 FM ते जी आर 6 संदेश शलक दे नाल तुसी बड़े होए। देखो मूवीज दी हमेशा गल करदे हुंदे आ क्योंकि मैं चाहनी हुंनी आ कि थोड़ा जिहड़ा हर टाइम हैगा ना, बेशक वीकेंड होवे ते बेशक वीकडेज होण, जदों भी

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.9 ते जी आर जी संदेश अलग दिन आप सुपने हुए। अगला नाम केड़ा है इस लिस्ट दे विच? ता अगला नाम है जी द रीफ। द रीफ आई सी 2010 दे विच। ता बहुत शानदार फिल्म है। कहानी मैं तुहानू पहला दस दिनी है। ता कहानी दी जे गल करिए ना तो आस्ट्रेलिया दे समुंदर विच एक किश्ती हैगी जिहड़ी पलटन तों बाद ना दोस्तां दा एक ग्रुप गहरे पानी विच फस जांदा है। उन्हां नूं किनारे तक पहुंचण दे लई तैरना पैंदा है पर एक विशाल शार्क उन्हां दा पिछा शुरू कर दिंदी है। इह फिल्म इसे दे इर्द गिर्द घूमदी है किवें शार्क तों बचदे ने, कौन बचदा है कौन नहीं बचदा, इह सब कुछ तुहानूं इस फिल्म दे विच देखण नूं मिलेगा। बहुत इंटरस्टिंग फिल्म है। इस नूं तुसीं नैटफ्लिक्स ते नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इसलिए तुहानूं देखना पैणा है एमाजोन प्राइम वीडियो।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04-111-27-035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 1-33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04-111-27-035। रिमेम्बर द नंबर इज 04-111-27-035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
6: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
5: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
6: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
5: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
6: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
7: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
8: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

ना बदला में, ना बदला।

0: Pourquoi?
1: यूएस के इलेक्शन के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निविया के साथ। और सबसे पहले आपको हैप्पी फ्राइडे। जी हाँ, जैसे कि मेरे कुछ लिसनर्स कहते हैं कि निविया सबसे ज्यादा खुश होती है फ्राइडे वाले दिन, और फ्राइडे जो है वो जल्दी से ही आ जाता है। अब मैं अगर इसके बारे में सोचूं तो सच में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे जो है वो आजकल जल्दी आ रहा है। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा मजाक कर रही हो क्या, इतना टाइम लगा देता है। मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन सबको सर्वाइव करना पड़ता है, उसके बाद फ्राइडे मिलता है कहीं जाके। चलिए, कहा है सर्वाइव नहीं करना है, थ्राइव करना है। और जब आप थ्राइव करते हो तो बात जबर आ गए हैं हम अपना ये प्रोग्राम लेकर। फ्राइडे है तो ऑफकोर्स मजेदार बातें होंगी, गपशप होगी और बहुत सारे गाने होंगे। और गाने भी कोई नॉर्मल नहीं बल्कि मजेदार होंगे, धूम धड़ाके वाले होंगे, क्योंकि फ्राइडे को जश्न मनाने का हमारे पास रीजन होता है। सबसे पहले करते हैं शुरुआत अपने हेल्दी रिचुअल के साथ। हेल्दी रिचुअल में डीप ब्रेथ एक्सरसाइज की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है लिटरली किसी भी चीज से गुजरने में। जी हाँ, मतलब आप हर चीज के लिए रेडी हो जाते हो इस एक्सरसाइज को करने के बाद। क्यों मैं कह रही हूँ, वेल आपको हमेशा मैंने बताया है, बट आज भी मैं बताना चाहूंगी कि ये जो एक्सरसाइज है आपको मेंटली फिजिकली जो है वो अच्छा बनाती है, शांत बनाती है, काम बनाती है, आपकी सोचने की शक्ति को जो है वो और ज्यादा बूस्ट कर देती है, ताकि आप अच्छे डिसीजन लो, अच्छे से काम करो और अच्छे से अपने गोल्स को अचीव करने में अपने स्टेप्स ले पाओ। सो आइए सबसे पहले वही करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत होगी एक बढ़िया से गाने के साथ, जिसका नाम है जब तलक। नाउ कॉकटेल 2 जो है वो रूल कर रही है कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पर, तो गाना भी तो बनता है। और ये गाना तो सच में आपको डांस करवा सकता है, तो डांस करने के लिए रेडी हो जाइए अगर आप उस सिचुएशन में है तो।

जी हाँ दोस्तों, जबरा फैन तो बढ़िया है, मतलब फैन बढ़िया, पर जबरा फैन जो है वो खतरनाक हो सकता है। आपने ये मूवी देखी है फैन? या अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको पता होगा, और अगर आप शाहरुख खान के फैन हो फिर तो आपने मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी को देखा होगा कि फैंडम जो है वो अच्छा है, लेकिन फैंडम जो है वो इतना नहीं खराब हो जाना चाहिए, मतलब इतना खतरनाक हद तक नहीं पहुंच जाना चाहिए कि आप जिसको आइडियलाइज कर रहे हो वो ही परेशान हो जाए। जी हाँ, सो ऐसी फैनगिरी से बचना चाहिए, और मैंने देखा है सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोगों को ऐसा फैंडम करते हुए। तो आपके आइडल को आप प्यार करते हो वो उनको अच्छा लगता है जानकर, बट दैट डजंट मीन कि आपको उस लिमिट को क्रॉस कर देना है कि हाँ मतलब फैंस जबरा फैन है। जो फैंस जबरा फैन का जो सफर है ना बहुत ही खतरनाक है। चलिए इसी के साथ यहाँ पर अब करते हैं बात मौसम की, क्योंकि मौसम के बारे में जानना जरूरी है भाई। आज है फ्राइडे, मतलब आज का मौसम और अगले 2 दिन का मौसम कैसा रहने वाला है, प्लस वीकेंड है फिर तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लान्स होते हैं और वो कहीं अफेक्ट ना हो जाए। नीड टू नो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर से। 21 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर आज रहा, बट अभी की अगर बात की जाए तो 18.7 डिग्री सेल्सियस के करीब है, और फील आपको हो रहा है 18.2 डिग्री सेल्सियस के करीब। आप लोग बोलोगे कि नहीं भैया शर्मा, ठंडी लग रही है हमको ठंडी। या आई नो ठंडी हम सबको लग रही है, डोंट वरी। सो बारिश की सिचुएशन जो है वो बनी हुई है, और ये बारिश जो है वो धूप नहीं आने देती, और धूप नहीं आती तो गर्माहट हमें लगती नहीं है। सो एक ठंड होती है जिसमें धूप निकलती है, तो आप ठंड जो है सुबह शाम की फिर भी सह लेते हो, और दिन में धूप जो है वो कहीं ना कहीं आपको हील कर देती है उस ठंड से। लेकिन जब बारिश हो रही होती है तो धूप भी नहीं मिलती, ठंड भी मिल रही होती है, सब कुछ जो है वो ऐसा ही चल रहा होता है। तो ये है दिन का जो है आलम, 80% चांसेस है जैसे मैंने कहा कि बारिश के। और आप मुझे बताइए आपके यहाँ कितनी बारिश हुई और कितनी हो रही है, और क्या बूंदाबांदी हुई या ज्यादा हुई, जरूर बताइएगा। रात की बात की जाए तो 13 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आप देख पाएंगे, और 1 to 5 mm बारिश आज बताई हुई है, और इसके साथ एयर क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट, नॉट जस्ट फेयर बट एक्सीलेंट। चलिए ये तो आज की यानी कि फ्राइडे की बात हुई, अब जरा कल की बात करते हैं, सैटरडे और संडे की भी शायद। तो 21 डिग्री सेल्सियस कल टेम्परेचर रहेगा मैक्सिमम विद 70% चांसेस ऑफ बारिश, मतलब कल भी बारिश के चांसेस 70% है, और 1 to 5 mm बारिश जो है वो कल भी आपको देखने को मिल सकती है। इसमें थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं, बट हाँ आज के मुकाबले थोड़ी सी कम हो सकती है। संडे की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा अगेन मैक्सिमम, और 60% चांसेस हैं बारिश के। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब कुछ दिन आपको बारिश मिलने वाली है एटलीस्ट ट्यूसडे तक, और फिर उसके बाद जो है वो आपको कहीं थोड़ी राहत मिल भी सकती है, बट उसके बाद फिर से मुझे बारिश दिख रही है। सो दोस्तों मैं इतना ही कहूंगी कि वीकेंड के जो प्लान्स है ना वो थोड़ा कोजी रहने में ज्यादा जो है वो प्लानिंग कीजिएगा, घर पे रहिए मजे से गरम गरम अच्छे से, और कुछ गरम गरम खाइए, कुछ गरम गरम पीजिए, मतलब गरम गरम पीना और वो जो यू नो व्हाट गरम गरम खाना वो आपको वैसे अंदर से कोजी कोजी फील करवाता है। सो मैं कहूंगी बाहर निकलने के जो प्लान्स है उनको थोड़ा कम बनाइए, लेकिन घर के अंदर रहिए। और इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਅਨੁਜ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਾ ਲਾਇਰ ਸਜੈਸਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਐਸਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਢੰਗ ਸੇ ਸੁਨੇ, ਸਮਝੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਮੁਝੇ ਸਮਝਾਏ।
2: ਅਰਸ਼ਾਦ ਲਾਇਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ ਹੋ, ਜੈਸੇ ਲੀਜ਼ ਕਾ ਮਾਮਲਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਯਾ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਕੀ ਬਾਇੰਗ ਸੇਲਿੰਗ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਡਿਵੋਰਸ ਜੈਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰਸ ਵੀ, ਵੋ ਸਭ ਮੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਖੜੇ ਰਹੇਗੇ। ਅਭੀ ਫੋਨ ਕਰੋ 0420-933-171 ਪਰ ਔਰ 15 ਮਿਨਟ ਕਾ ਫ੍ਰੀ ਫੋਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੋ।
1: ਅਰੇ ਵਾਹ, ਇਨਕਾ ਪਤਾ ਬਤਾਨਾ।
2: ਅਰਸ਼ਾਦ ਲਾਇਰਸ, ਮਾਊਂਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟ ਸ਼ੋ ਗਰਾਉਂਡਸ, ਆਫਿਸ 5-1644 ਲੋਗਨ ਰੋਡ, ਮਾਊਂਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟ, ਐਂਪਲ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਕਾਲ ਅਰਸ਼ਾਦ ਫ੍ਰੋਮ ਅਰਸ਼ਾਦ ਲਾਇਰਸ ਨਾਉ ਔਨ 0420-933-171। ਵੈਬਸਾਈਟ www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
6: Hi, this is Salman Khan. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
7: Hi, this is Deepika Padukone. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, main hoon Tulsi Kumar. Aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani pe.
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
12: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
13: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
12: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
13: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
12: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं
14: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, तो प्रोग्राम की शुरुआत हो गई, मौसम के बारे में भी हमने आपको पहले ही बता दिया है, पहले ही आगाह कर दिया है क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। बाकी थोड़े बहुत चेंजेस तो आ ही जाते हैं क्योंकि मौसम अनप्रेडिक्टेबल है, जस्ट लाइक यू नो व्हाट आई मीन राइट। सो आइए अब जरा आपकी फरमाइशों के बारे में बात कर ली जाए, क्योंकि आपकी फरमाइशें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस प्रोग्राम का, हमारे इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाती हैं आपकी फरमाइशें, तो वो तो जल्दी से आनी चाहिए, जबरदस्त तरीके से आनी चाहिए। सो अपने फेवरेट गाने फरमाइश करने के लिए आपको करना क्या है? वेल, आपको फोन उठाना है, नंबर डायल करना है और वो नंबर है +9182888-71701। आई रिपीट, +9182888-71701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं, हमारी तरफ से थोड़ा सा टल्ली, ना, बिल्कुल टल्ली होना इज नॉट अ गुड थिंग, लिकर इज नॉट अ गुड थिंग, बट यहां पर गाना मैं आपको सुनाने वाली हूं कुछ वैसा सही, बट इन जनरल लिकर, एल्कोहल एंड कंज्यूमिंग एल्कोहल इज बैड, सो ये याद रखना है आपको हमेशा।

जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप फीफा वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि कौन सी टीम क्या जलवे बिखेर रही है और कौन सी टीम बेचारा अपना लिटरली काम करने की कोशिश कर रही है, वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। बट हम उस तरफ नहीं जाने वाले, वी आर नॉट गोना गो देयर। हम बात करने वाले हैं नॉर्वे की, जो कि बहुत ही जबरदस्त नेशन है। ऑफकोर्स मतलब नॉर्वे की बात की जाए तो एक चीज मुझे हमेशा याद आती है और वो है वहां की नॉर्दर्न लाइट्स। मतलब इट्स अ स्कैंडिनेवियन कंट्री एंड यू नो वहां की नॉर्दर्न लाइट्स, वहां के खूबसूरत नजारे जो हैं वो दुनिया में फेमस है। बट अगेन हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं उस ट्रस्ट की जो नॉर्वे ने अमेरिका को दिखाया ही नहीं। जी हाँ, अब ऑफकोर्स यूरोपियन कंट्रीज जो है वो भी स्कैंडिनेवियन यूरोपियन कंट्रीज जो है वो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती है अमेरिका को, ये तो हमने पहले ही देख लिया है। लेकिन यहां पर वर्ल्ड कप के लिए जब नॉर्वे की टीम आ रही थी अमेरिका, तो उन्होंने अपना खाना नॉर्वे से खुद ही पैक करवा दिया। जी हाँ, मतलब उन्होंने अपने प्लेयर्स के लिए जो खाना था वो नॉर्वे से ही पैक करवा दिया। अब आप लोग बोलोगे कि है कितना ही खाना पैक करवाया होगा, मतलब टूर्नामेंट जो है वो काफी बड़ा होता है, सो ऐसे में कितना। वेल, 1000 किलोग्राम्स ऑफ फूड जो है वो नॉर्वे की टीम अपने साथ लेकर आई थी और नॉर्वे ने ये शिप किया है 1000 किलोग्राम ऑफ फूड टू यूएसए, बिकॉज नॉर्वे की टीम वर्ल्ड कप खेलने अमेरिका आ रही थी और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि वी डोंट ट्रस्ट अमेरिकन फूड। वेल ऑफकोर्स वी ऑल्सो डोंट ट्रस्ट अमेरिकन फूड, क्योंकि उनका जो खाना है वो लिटरली लैब ग्रोन फूड, उनका आजकल फेवरेट फूड बन गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड उनके सीड्स हैं और पता नहीं क्या क्या है। सो अगली बार से अगर आपको भी अमेरिका जाने का मौका मिले तो जरा ध्यान से खाइएगा, क्योंकि अमेरिका का खाना जो है वो लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि आप अच्छी चीज खा रहे हो, ठीक चीज खा रहे हो, लेकिन उसके पीछे की रियलिटी यू नेवर नो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बिल गेट्स जो है वो अमेरिका से ही है और बिल गेट्स क्या क्या करते हैं उसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो आप इमेजिन कीजिए नॉर्वे ने कितना जबरदस्त थप्पड़ मारा है अमेरिका के चेहरे के ऊपर। मतलब क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ। वेल, मैं ये कहूंगी कि नॉर्वे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट कंट्री है, दैट्स ऑल आई कैन से। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 0411270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 0411270035। रिमेम्बर द नंबर इज 0411270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
5: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਖਾਲੀ ਕੈਨ, ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਕਾਰਟਨ ਉੱਤੇ 10 cents ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਕੁਆਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਖਰਚੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਫੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 10 cents ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
6: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलोंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
7: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। तो दोस्तों, 25 जून से शुरू हो गई थी GTA 6 की बुकिंग्स, प्री बुकिंग्स जो है वो शुरू हो गई थी। और GTA 6 जो है कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं है, GTA 6 यानी कि ग्रैंड थेफ्ट 6 जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में everyone was talking about। और मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि जिस दिन इसके बारे में बताया गया था, जिस भी दिन इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिवील की जाती है, पब्लिक की जाती है कंपनी की तरफ से, लोग जो है वो इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे 25 जून से शुरू होने वाली है इसकी प्री बुकिंग्स, मतलब आप अपना GTA 6 जो है वो कर सकते हो अपने PS5 के लिए ऑर्डर। जी हाँ, प्री बुकिंग जो है वो शुरू हो गई है। नाउ एक और चीज है जो GTA 6 को लेकर बहुत ही ज्यादा फनी है, और वो है वो कहावत कि जब भी कुछ नया होता है तो वो कहते हैं, मतलब कुछ नया और यूनिक होता है तो ऐसी कहावत बना दी गई है इंटरनेट पर कि हमको GTA 6 से पहले ये भी देखने को मिल गया, ये भी देखने को मिल गया, ये भी हो गया, पर हमें GTA 6 नहीं मिली. या इट्स अ कहावत, लाइक लिटरली इट्स अ इंटरनेट कहावत जो कि बहुत सारे लोगों ने देखी है, सुनी है और पढ़ी भी है. सो यहाँ पर एक और दिलचस्प चीज है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और इसके बाद आपको लगेगा कि नॉर्वे इज सच अ लकी कंट्री. सो बेसिकली जिस दिन गेम लॉन्च होने वाली है उस दिन नॉर्वे में जितने भी बच्चे पैदा होने वाले हैं उनको फ्री GTA 6 मिलने वाली है. कैन यू बिलीव? या इट इज ट्रू. एंड आई वाज लाइक ओ, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि माय गॉड हम नॉर्वे के क्यों नहीं है, बट ठीक है, मतलब GTA 6 आ जाए तो वो खरीदना जो है वो कोई इतनी बहुत परेशानी वाली बात नहीं है. पर ये सम्मान देना नॉर्वे को और नॉर्वे के बच्चों को कि जिस दिन तुम पैदा हो गए और उसी दिन अगर हमारी गेम लॉन्च हो रही है और उसी दिन तुम भी पैदा हो रहे हो तो हम तुमको GTA 6 जो है वो फ्री में देने वाले, क्या एडवर्टीजमेंट है, सॉलिड एडवर्टीजमेंट. अब लोग जो है वो स्पेशली अपनी डिलीवरीज जो है मुझे लगता है कि GTA 6 वाली डेट को ही प्लान करने वाले हैं. बाय द वे, इफ यू डोंट नो अबाउट द डेट, कंपनी के मालिक ने ही कहा है कि 19th ऑफ नवंबर को गेम जो है वो लॉन्च होने वाली है. पर जैसे मैंने कहा कि 25 जून से इसकी प्री बुकिंग्स शुरू हो गई हैं, बाकी आप खुद ही देख लीजिए अगर आप फैन हो, और अगर आप नहीं हो फैन तो आप फीफा वर्ल्ड कप देखिए और क्या मजे कीजिए. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.
8: भाई सूट पहन के बन गया दूल्हा, और सूट पहन के बन गया दूल्हा, कल तक था जो नंगा भाई घर

जी हाँ दोस्तों, मुझे इतनी बात तो पता चल गई, इस दुनिया में एयर इंडिया वालों से ज्यादा अनाड़ी कोई नहीं है। मतलब इनकी फ्लाइट्स जो हैं वो कहीं भी लैंड करनी पड़ जाती है, कहीं पे टेक्निकल इशू आ जाता है, और कहीं तो मतलब इन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर भी किया हुआ है। सो ऑफकोर्स यहाँ पर उन्होंने एक और ब्लंडर किया है। जी हाँ, क्या आपने कभी देखा है और सुना है कि एक फ्लाइट जो कि कहीं और जा रही थी और कहीं और पहुंच गई? वेल, आप लोग बोलोगे कि नहीं भाई शर्मा, ऑफकोर्स सुना है, तुमने ही तो बताया था कि एक फ्लाइट कहाँ जा रही थी, चाइना में पहुंच गई या कनाडा जा रही थी या कहीं और पहुंच गई। वैसे ऐसे एक दो तीन इंसिडेंट्स जो है वो हुए हैं, लेकिन यहाँ वाला जो है वो और भी फनी है, क्योंकि यहाँ पर एक एयर इंडिया की फ्लाइट जो कि दिल्ली से अमृतसर जा रही थी, जी हाँ, ये इंडिया का जो है ये फनी सा इंसिडेंट है, जहां पर फ्लाइट जो है वो दिल्ली से अमृतसर जा रही थी और वो गलती से पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस जाती है। जी हाँ, मतलब ब्लंडर भी करो तो ऐसा कि चार देशों की पुलिस आपके पीछे पड़ जाए। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ, जब मैंने इसके बारे में सुना मैं हंस के लिटरली गिरने वाली थी। आई वाज लाइक हाउ इन द वर्ल्ड, मतलब ओनली एयर इंडिया के साथ ही ऐसा क्यों होता है? मतलब इतनी सारी और भी फ्लाइट्स हैं, वो तो ठीक चल रही हैं, और जो वो गलती से कहीं और पहुंच गई थी और जो कहीं और जा रही थी कहीं और पहुंच गई थी और रास्ते से उन्हें वापस आना पड़ा था, वो भी एयर इंडिया की ही फ्लाइट थी बाय द वे। जी हाँ, सो एयर इंडिया ही करती है वो बड़े बड़े ब्लंडर। तो यहाँ पर ये बड़ा फनी सा इंसिडेंट हुआ, जब दिल्ली से गई अमृतसर जा रही थी और गलती से पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस गई, और वहां पर फिर जब उन्होंने जो है फ्लाइट कंट्रोल वालों ऑफिसर्स ने, पाकिस्तान के फ्लाइट कंट्रोल ऑफिसर्स ने उनको चेतावनियां दी कि ओ वॉच आउट डूड, तुम पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस गए हो, एंड देन द पायलट वाज लाइक ओप्स आई एम सॉरी, गलती से हो गया, कोई बात नहीं, पड़ोसी देश तो है ही ना। जी हाँ, सो यहाँ पर बड़े ही अच्छे से फिर उन्होंने अपनी फ्लाइट को मोड़ा और फिर वो अमृतसर गए। वाह, आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट। जी हाँ, मतलब वहां पे वो वार्निंग्स दी, तब उनको पता चला कि वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस गए हैं। लिटरली आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट। आप मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
4: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ. हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड.
3: ऐसा क्या खास है वहाँ?
4: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया. ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं. साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए.
3: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
4: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999. ओपन 7 डेज. फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818. दैट्स 3804-3818.
5: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं. आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है. इसे हम बिनकॉइन कहते हैं. अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें. आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है. बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में. अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें.
6: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
7: Mera naam Dr. Kumar hai, aur yahan kuch aisa hai, jise janna acha hai. Ek naya National Lung Cancer Screening Program shuru hua hai. Ye saral hai, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और नई बात हुई, मतलब एक कंपटीशन जिसका नाम सुपर 500 था, जिसमें कि सुपर कंप्यूटर्स, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा जबरदस्त सुपर कंप्यूटर बनाती है, उसका कॉम्पिटिशन था, सुपर कंप्यूटर्स का कॉम्पिटिशन था बेसिकली, और उसमें चाइना जीत गया है। फर्स्ट टाइम सिंस 2017, जी हाँ 2017 से ये शुरू हुआ था, और उसके बाद से जो है वो चाइना पहली बार यहाँ पर जीता है। आप लोग बोलोगे कि अच्छा ऐसा कैसे हो गया, मतलब अमेरिका नहीं जीता? वेल अमेरिका को चाइना हर जगह से धूल चटा रहा है, और यहाँ पर भी उसने ये कर दिया। एंड गेस व्हाट, उन्होंने अपना सुपर कंप्यूटर GPU से नहीं CPU से बनाया है, और उन्होंने इस सुपर कंप्यूटर को उतारा इस कॉम्पिटिशन में और वो जीत गए। अब अगर आप लोगों को नहीं पता कि सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, तो लेट मी टेल यू समथिंग कि सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, वो एक साथ बहुत सारी चीजें जो है वो प्रोसेस करते हैं। वो किसी भी चीज में रिसर्च करनी हो, फिर चाहे वो मेडिसिन हो, फिर चाहे वो वेदर हो, नेचर हो, किसी भी चीज में वो एक साथ जल्दी जल्दी चीजों को प्रोसेस करेंगे, कैलकुलेशंस को प्रोसेस करेंगे, और उसका रिजल्ट जो है वो जल्दी देंगे। जी हाँ, पर सेकेंड में वो बहुत कुछ कर देंगे। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो सुपर कंप्यूटर है जिसे चाइना ने बनाया है, उसका लाइन शाइन कंप्यूटर नाम उन्होंने रखा हुआ है, और इसे GPU से नहीं बल्कि CPU से बनाया गया है, क्योंकि अमेरिका GPUs अपने नहीं बेचता है, और उसने बेचना बंद कर दिया है। सो ऑफ कोर्स चाइना के पास GPUs नहीं थे, लेकिन उन्होंने CPUs की मदद से ही, विच वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उनके साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया कि CPUs की मदद से भी सुपर कंप्यूटर जो है वो बनाए जा सकते हैं। और यहां पर ये कितना काम करता है पर सेकेंड, आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट, 2 quintillion कैलकुलेशंस पर सेकेंड। जी हाँ, 2 quintillion कैलकुलेशंस पर सेकेंड, मतलब मैं सोच रही हूं तो भी मेरा सर चकरा रहा है। सो ये जो हमारे घर में सिस्टम्स पड़े हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो, दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट। सो या मतलब आई हैव टू से चाइना, यू आर डूइंग ग्रेट इन दैट वे, क्योंकि उन्होंने लिटरली अमेरिका को यहाँ पर धूल चटा दी है। 2 quintillion calculations per second is massive, that too a computer made by just CPUs, not GPUs। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, अब इसी के साथ सीधा चलते हैं खबरों की दुनिया की तरफ। जी हाँ, आपने सही सुना, खबरों की दुनिया की तरफ जाने का वक्त हो गया है, खबरों के बारे में बात करने का वक्त हो गया है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे जापान से, क्योंकि वेनेजुएला में भूकंप के बाद जापान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और ये झटकों ने सुनामी की वार्निंग को इशू नहीं किया और ऑफकोर्स किसी इंसान को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। एंड गेस व्हाट, ये भूकंप के झटके फिर से तोहुकू रीजन में ही आए। तो हुकू रीजन, इफ यू डोंट नो अबाउट इट, 2011 में जापान की सबसे बड़ी सुनामी, मतलब सबसे बड़े नेचुरल डिजास्टर जो कि इस दुनिया में हुए हैं उनमें से एक है वो वाला नेचुरल डिजास्टर। मतलब लिटरली जापान को अगर किसी चीज ने हिलाया है, उनकी इकोनॉमी को किसी चीज ने हिलाया, वहां के लोगों की विल पावर को किसी ने हिलाया है, तो वो वही नेचुरल डिजास्टर था जो कि 2011 में हुआ था भूकंप। उसके बाद सुनामी आई थी और उसने बहुत सारे लोगों को जो है लाशों में तब्दील कर दिया था। जी हाँ, सो ऐसे ही भूकंप के झटके, ऑफ कोर्स वो 6.5 से के नीचे ही था ये भूकंप के झटके जो थे। सो ऑफ कोर्स इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जापान एक ऐसी कंट्री है जो कि लिटरली इन चीजों से अपने आप को बचाना जानती है। सो ऐसे इतने लेवल और इतने मैग्नीट्यूड के झटके जो है वो जापान को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बट इसके बाद जो है वो और भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, और भूकंप आ सकते हैं या नहीं आ सकते, इसके लिए जो है वो अथॉरिटीज एकदम से फिर से जो है वो जाग गई हैं। दे आर लाइक ओके, नाउ वी नीड टू फिगर आउट कि और ऐसा कुछ हो सकता है, फिर से एक और भूकंप आ सकता है ऐसा ही, एंड सेम रीजन, एंड यू नो दैट्स द वर्स्ट पार्ट। एंड वहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है जापान का, दैट इज ऑल्सो द वर्स्ट पार्ट। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, जापान ने बहुत टाइम तक इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को शुरू नहीं किया था, अब कुछ टाइम पहले उन्होंने इसे शुरू किया, और वो इसीलिए हुआ था क्योंकि 2011 में जो हुआ उसके बाद जो है वो न्यूक्लियर जो है वो रिएक्टिव्स जो हैं उसकी जो है वो कुछ अफेक्ट जो है वो वहां पर देखा गया था, और इसीलिए जापान ने उसको सील कर दिया था, उसको बंद कर दिया था। अभी कुछ वक्त पहले ही उसे खोला और फिर से जो है वो उसी ही रीजन में, तोहुकू रीजन में ही भूकंप आना, भूकंप के झटके महसूस करना इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। खासकर वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट का होना भी एक बहुत ही बड़ा जो है वो खतरा बता सकते हैं, क्योंकि जब भी सुनामी आती है और ऐसी जगह पर सुनामी आएगी तो वो लिटरली गड़बड़ कर सकती है। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, वहीं पे बात हो रही है खबरों की दुनिया की। और हॉर्मुज स्ट्रेट में एक जहाज पर हमला, यूएन ने नाविकों को निकालने वाला अभियान रोका। जी हाँ, हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक मालवाहक जहाज पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने वहां फंसे 11,000 से अधिक नाविकों की निकासी का अभियान अस्थायी रूप से रोक दिया है। आईएमओ के प्रमुख आर्सेनियो डेमगुइंज ने कहा कि कई जहाजों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन संगठन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि आगे की निकासी से पहले सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम बने रहें। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक गुरुवार को ओमान के दहीत बंदरगाह से दक्षिण पूर्व में करीब 7.5 समुद्री मील दूर एक मालवाहक जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। समुद्री सुरक्षा कंपनी वैनगार्ड के अनुसार सिंगापुर के झंडे वाला मालवाहक जहाज एवर लवली हमले के बावजूद सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने में सफल रहा और उसे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के कारण फरवरी से खाड़ी क्षेत्र में सैकड़ों जहाज और हजारों नाविक फंसे हुए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट द्वारा खुलने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को निकासी अभियान शुरू करने की घोषणा भी की थी।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: The Total Focus Group Australian International Masters 2026, hosted by Queensland Fiji Football Association QFFA, from 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane, with 32 teams already confirmed participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family, live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar, connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.
4: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
7: तूने ओमसॉर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
6: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
7: बिल्कुल, ओमसॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमसॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए। इंडिया नंबर 8448381360। ओमसॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। तो दोस्तों, हम जरा बात कर लेते हैं खबरों की फिर से, और वेनेजुएला के भूकंप की क्या अपडेट है आइए जरा वो बताते हैं। क्योंकि पिछले कल वेनेजुएला में एक भूकंप आया जिसने लिटरली वहां की अर्थव्यवस्था, वहां के लोगों की जिंदगी को हिला कर रख दिया। अब तक उसमें मरने वालों की संख्या 188 हो गई है और 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जी हाँ, 188 लोगों की मौत जो है वो इस भूकंप में हुई है। अभी अभी तक के लिए जो आंकड़े हैं उस हिसाब से, और 1500 लोग जो हैं वो घायल हैं। सो वेनेजुएला की राजधानी कराकस के पास आए दो भीषण भूकंप के बाद बचाव कार्य जारी है। बचाव कर्मी अभी भी मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। इस आपदा में अब तक कम से कम 188 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। काराकस और पास के तटीय शहर ला गुआयरा में ढही हुई इमारतों के मलबे के नीचे से लोगों की मदद के लिए पुकार सुनाई दे रही है। वहीं कई लोग बेघर हो गए हैं, जबकि क्षतिग्रस्त और असुरक्षित इमारतों में रहने से डरे लोग सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक पहले 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके कुछ ही सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का इससे भी अधिक शक्तिशाली भूकंप आया। दोनों भूकंप धरती की सतह के काफी करीब आए, जिससे भारी तबाही हुई। भूकंप बुधवार को स्थानीय समयानुसार आया। जी हाँ, ये भूकंप ने लिटरली वेनेजुएला को हिलाकर रख दिया है, और ये बहुत बड़ा साइन है कि कैसे नेचुरल डिजास्टर और खासकर जब प्रलय आती है तो वो किसी को नहीं देखती। वेनेजुएला के इतिहास में 150 साल में ये इतना खतरनाक भूकंप पहली बार आया है। 150 साल बाद इतना खतरनाक भूकंप जो है वो आया है। ऐसा भूकंप न किसी ने देखा वहां पर, ना सुना। ऑफकोर्स ऐसे भूकंप जो है वो हमने जापान और उस क्षेत्र में सुने हैं, लेकिन वेनेजुएला कभी भी नहीं। लेकिन इस बार वेनेजुएला इसका शिकार बना है।

जी दोस्तों, खबरों की बात हो रही है, वहीं निहंग सिखों के एक जत्थे को उत्तराखंड पुलिस ने रोका, कुलहाल बॉर्डर पर झड़प। जी आप जरा बात करते हैं भारत की, इंडिया में उत्तराखंड में बहुत कुछ हो रहा है। उत्तराखंड के चमोली के कर्ण प्रयाग में 16 जून को हुई झड़प के बाद पैदा हुए तनाव के बीच गुरुवार रात देहरादून की ओर बढ़ रहे निहंग सिखों के एक जत्थे और उत्तराखंड पुलिस के बीच हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर झड़प हो गई। पुलिस ने जत्थे को कुलहाल बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की, लेकिन धक्का मुक्की के बीच कुछ निहंग बैरिकेड पार कर उत्तराखंड की सीमा में दाखिल हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और वापस हिमाचल प्रदेश की ओर भेज दिया। सामने आए वीडियो और तस्वीरों में बैरिकेडिंग वाली सड़क पर पुलिसकर्मियों और निहंग सिखों के बीच धक्का मुक्की और झड़प होती दिखाई दे रही है। यह जत्था मोहाली स्थित एक गुरुद्वारे से रवाना हुआ था। इससे पहले निहंग प्रतिनिधियों और उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी, जिसके बाद कुछ प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया था। हालांकि निहंग सिखों का एक वर्ग उत्तराखंड जाने के अपने फैसले पर कायम रहा। मीडिया से बातचीत में निहंग प्रतिनिधि अकाली जसदीप सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी तरह का टकराव नहीं बल्कि समाधान है। उन्होंने कहा, हम किसी तरह की लड़ाई नहीं चाहते, प्यार बढ़ाना चाहते हैं, गलती हमारी नहीं थी, फिर भी हम माफी मांगते हैं। हम चाहते हैं कि समझौता हो और हमारे चार लोगों को रिहा कर पंजाब भेजा जाए। हमें हेमकुंड साहिब की यात्रा करनी दी जाए, लगभग 4 दिनों में उनकी जमानत भी हो जाएगी और यात्रा से लौटते समय हम उन्हें अपने साथ पंजाब ले जाएंगे। जब तक हमारे चारों साथी नहीं होंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। निहंग सिखों के 25 जून को कर्ण प्रयाग कूच के आह्वान के बाद उत्तराखंड पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ट्रंप रोस्टिंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि अब हम रोस्ट करने वाले हैं मिस्टर ट्रंप को, जो कि हमारा फेवरेट सेगमेंट्स में से एक है. वेल, हमारा फेवरेट सेगमेंट आई थिंक ओल्ड इज गोल्ड है, लेकिन ये सेकंड फेवरेट है, कुछ का ये ज्यादा फेवरेट है. सो मैं यहाँ पर कहूंगी कि ट्रंप के बारे में हम क्या कहें. वेल, ऑफकोर्स जितना धमाल, जितना रायता वो इस दुनिया में फैला रहे हैं वो तो एक चीज है, लेकिन अब खबर आई है कि फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में ट्रॉफी प्रेजेंट करने के लिए ट्रंप पहुंचेंगे. या आपने सही सुना, ट्रंप ट्रॉफी प्रेजेंट करने के लिए फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचेंगे और विनिंग टीम को वो ट्रॉफी देने वाले हैं. अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि टीम्स जो हैं ये सूचना मिलने के बाद जीतना चाहती भी हैं या नहीं चाहती हैं. मतलब अभी तक तो सब इतने ज्यादा क्रेजी थे, यू नो गॉड, वी आर गोना डू दिस, हम फीफा वर्ल्ड कप को बहुत ही अच्छे से खेलने वाले हैं, हम जीतने वाले हैं. मतलब फीफा वर्ल्ड कप इज लाइक अ ड्रीम फॉर एनी सॉकर यू नो प्लेयर एंड फुटबॉल प्लेयर. So, ऐसे में जब उनको ये पता चला कि सबसे खतरनाक और सबसे टुच्चा इंसान इस दुनिया में आके उनको वो ट्रॉफी प्रेजेंट करने वाला है, तो वो क्या करने वाले हैं? मुझे नहीं लगता उनको जीतने की कोई इच्छा है, और जीत भी जाएंगे तो दिल भी लाइक ओके, हम ये जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी है ना वो थोड़ी देर में ले लेंगे, थोड़ी देर में आप हमें पहुंचा देना, अभी अभी रहने तो ये मत करो, आप ये मत करो, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है. ये हमारे लिए सम्मान नहीं बल्कि बेईमान वाली फीलिंग ज्यादा आ रही है. मतलब अपमान में नहीं कहूंगी, लेकिन सम्मान का जो बेईमानी के साथ जो सम्मान आता है ना, वो वाली सिचुएशन वहां पे हो जाएगी. अब आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा, मतलब फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नो मैटर, कोई ट्रंप को कितना भी ज्यादा नापसंद करता हो, ट्रॉफी तो उनके हाथ से ले ही लेगा. वेल, ये इंसान इतना फनी है, आपको मैं बताती हूँ. कुछ टाइम पहले इंटर मायामी के लिए लियोनेल मेसी जो है वो वहां पर पहुंचे हुए थे व्हाइट हाउस, वो मिले, और डोनाल्ड ट्रंप बड़े ही अच्छे से बोलते हैं कि यू नो व्हाट, आज मेरा बेटा मेरे पास आया, एंड ही वाज लाइक, यू नो व्हाट डैड, आपको पता है आज कौन आने वाला है? तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने उसे बोला कि हाँ ठीक है, कौन आने वाला है, मतलब मुझे क्या पता कौन आने वाला है, मेरे पास बहुत सारी चीजें करने के लिए, ये थोड़ी पता होगा मुझे, ये थोड़ी टाइम है मेरे पास जानने का कि कौन आने वाला है. देन ही वाज लाइक, यू नो व्हाट, आज मेसी आने वाला है. जी हाँ, एंड ही वाज लाइक, यू नो व्हाट, माय किड इज अ बिग फैन ऑफ योर्स. और लियोनेल मेसी वहां पर खड़े हैं और वो एकदम अपने दांत दिखा रहे हैं, एंड ही वाज लाइक, ओके, आई वांट टू डू सो मेनी थिंग्स, आई वांट टू से सो मेनी थिंग्स, बट आई कांट राइट नाउ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड वो हंसते रहे. चलिए, ये सब तो ठीक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और बात कर दी, जिसके बाद तो मेसी की हंसी मुझे लग भी नहीं रहा था कि वो हंस भी रहे हैं. उसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुक्का मारने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप को. इट वाज लाइक, यू नो व्हाट, माय किड इज अ बिग फैन ऑफ योर्स, एंड आल्सो टू ऑफ अ वंडरफुल पर्सन, अ ग्रेट पर्सन, रोनाल्डो, नेम रोनाल्डो. जी हाँ, तो मतलब मेसी की तारीफ कर रहे हैं और साथ में रोनाल्डो की भी तारीफ कर रहे हैं. मेसी विल बी लाइक, ओह अरे भाई, इससे अच्छा तो तुम तारीफ मत ही करते, इससे अच्छा तुम अपने बेटे को मना लेते कि वो मेरा फैन होता ही ना. मतलब मेरा भी फैन है, रोनाल्डो का भी फैन है, क्या चल रहा है बीड़ू? वेल, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि दोनों का, कोई भी इंसान जो है इन दोनों का फैन नहीं हो सकता, हो सकते हैं, देयर आर मेनी पीपल. इट्स जस्ट दैट कि वो उनके मुंह पे कह देना, दैट टू, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी एहसास नहीं है. मुझे नहीं पता वो जानबूझ के वो चीज बोल रहे थे या नहीं, बट मेसी वॉज लाइक, ओके, कोई मुझे यहां से लेके जाओ. आई मीन ही वॉज ट्राइंग टू लाफ, वो चीज वाले पोज में थे, बट देन ही वॉज लाइक, यू नो व्हाट, कोई मुझे यहाँ पे लेके जाओ, या इसको लेके जाओ, कोई तो लेके जाओ, क्योंकि ये इंसान कुछ भी बोल रहा है. मतलब मेरा भी फैन है, मेसी का भी फैन है, मतलब मेसी का भी फैन है, रोनाल्डो का भी फैन है, डिसाइड कर ले किसका फैन है. जी हाँ, और ये सब वो बोल रहे थे. अब आप सोचिए कि वो बंदा इतना क्लूलेस है, वो जाएगा फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देने उस टीम को जो कि लिटरली इतनी मशक्कत के बाद जीतेगी. आई डोंट नो वो लेना भी चाहते हैं ये ट्रॉफी या नहीं. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
3: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। तो दोस्तों, अब जरा बात कर ली जाए मूवी कौन सी रिलीज हो रही है, क्योंकि हम तो ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट तक पहुंच ही गए हैं। सबसे पहले ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट शुरू हो, हमें ये तो आपको बताना है कि आप क्या क्या इस हफ्ते, इस वीकेंड जो है वो देख पाओगे, और आज कौन सी मूवीज जो है वो रिलीज हुई है। सबसे पहले बात करते हैं वेलकम की। जी हाँ, Welcome 3 यानी कि वेलकम टू द जंगल रिलीज हो चुकी है, और अक्षय कुमार के साथ बहुत सारे लोग इसमें आपको नजर आने वाले हैं। आई एम नॉट इवन गोना नेम देम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनका नाम लेने लगूंगी तो बहुत लंबा वक्त बीत जाएगा, इतने सारे लोग हैं इस मूवी में। आप लोग बोलोगे सारे एक्टर्स को भर दिया इसमें, या ऐसा ही आप बोलने वाले हो उस मूवी को देखने के बाद। सो ट्रेलर देखिए एंड लेट मी नो आप इस मूवी को देखने जाने वाले हो या नहीं। अगर आप पंजाबी मूवीज देखते हो, पंजाबी मूवीज के फैन हो, तो कैरी ऑन जट्टा, जी हाँ कैरी ऑन जट्टा 4 जो है वो आ गई है और वो भी रिलीज हो गई है, आप वो भी देख सकते हो। सो लेट मी नो आप क्या इस मूवी को देखने वाले हो। बट मैं इतना आपको कह दूं कि कैरी ऑन जट्टा जो है, जब पहली आई थी तभी से वो बहुत ज्यादा फेमस है। इट्स अ वेरी बिग पंजाबी मूवी और इसमें जो ह्यूमर है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो ये भी रिलीज हो गई है। अच्छा, ये तो दो मूवीज हैं जो इस हफ्ते रिलीज हुई है, मतलब आज रिलीज हुई है। पिछली वाली के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कॉकटेल 2 जो है वो लगी हुई है 100 करोड़ से ऊपर की कमाई कर चुकी है और 150 करोड़ के बजट में बनी है। तो एक हफ्ते में 100 करोड़ कमाना इज अ फीट लिटरली। सो दिनेश विजान की बनाई हुई ये मूवी अगेन अच्छा काम कर रही है, और शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना एंड कृति सेनन के साथ आप इसे देख सकते हैं। मैं वापस आऊंगा, दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना एंड शर्वरी वाघ की वो कहानी, एक प्रेम कहानी जिसमें एक बहुत ही प्रेमी जोड़ा जो है, खूबसूरत प्रेमी जोड़ा जो है, वो बिछड़ जाता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के उस बंटवारे में. उसी की कहानी है, खूबसूरत है, आपको हंसाएगी और आपको रुलाएगी भी. सो या उसके लिए रेडी रहिएगा. और इसी के साथ सुपर गर्ल इज ऑल्सो हेयर और टॉय स्टोरी 5 आप देख सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ इसको देख सकते हैं. जी हाँ, और इसके अलावा आप बैक रूम भी देख सकते हैं. सो ये कुछ मूवीज है जो लगी हुई है और जिसमें आज कुछ रिलीज हुई है और बाकी पहले से लगी हुई है पिछले हफ्ते से, आप इन सबको देख सकते हो. आप मुझे बताइए किसको आप देखने वाले हो, कौन सी मूवी आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करने में एकदम कामयाब रही है. एंड इसी के साथ यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है,
6: मुझे कुछ कहना है,

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो गया है अब अपने फेवरेट सेगमेंट को शुरू करने का. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड इज गोल्ड. जी हाँ, ओल्ड इज गोल्ड का वक्त हो गया है. और अगर आप लोगों को कोई गाना फरमाइश करना है, खासकर कोई पुराना गाना फरमाइश करना है, तो ये सबसे अच्छा टाइम है, परफेक्ट टाइम है. हम इस सेगमेंट में आपको पुराने गाने सुनाते हैं, इस सेगमेंट में हम आपको पुराने किस्से भी सुनाते हैं और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं. सो ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू मिस इट. एंड फरमाइश जो है वो आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी फरमाइशों के द्वारा हमें कुछ ऐसे गाने भी सुनने को मिलते हैं जो कि हमने सुने भी नहीं होते. सो अगेन आई लव माई लिसनर्स की ऑल द रिक्वेस्ट, बिकॉज आप लोगों की फरमाइशों में जो बात है वो किसी भी चीज में नहीं है, लाइक लिटरली किसी भी चीज में नहीं है. So, जल्दी से फरमाइश कीजिए कोई पुराना सा गाना, खूबसूरत सा, जो कि आपको लगता है बहुत ही खास है. और इसी के साथ सेगमेंट की शुरुआत होगी हमारे बहुत ही खास

गाने के साथ जो पहला गाना भी आपने सुना इससे पहले, वो भी एक ऐसी जोड़ी का गाना है, डिंपल कपाड़िया और ऋषि कपूर का. और ये वाला गाना भी ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया का ही गाना है. और ये गाना अपने आप में बहुत खास है. क्यों? सुनिए, आपको पता चल जाएगा.

जी हाँ दोस्तों, किशोर दा के गाने से शुरुआत हुई है, तो किशोर दा के किस्से से भी शुरुआत करते हैं। सो ये किस्सा है उस गाने का, किसका रास्ता देखे। जी हाँ, इससे ज्यादा मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब सिचुएशन ऐसी थी कि किशोर दा अपनी पेमेंट्स को लेकर, अपने पैसों को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थे। ऐसा कहा जाता था कि किशोर दा पैसा मिलने के बाद ही रिकॉर्डिंग किया करते थे। जी हाँ, मतलब वो जाते थे, वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठते थे और फिर वो चाय मंगवाया करते थे कि चाय लाना चाय। लेकिन चाय लाना वॉज जस्ट यू नो व्हाट, एक कीवर्ड होता था। चाय की जगह वो चेक मांग रहे होते थे। जी हाँ, वो पैसे मांग रहे होते थे। और जब उन्हें पता चल जाता था कि पैसे आ गए हैं, पैसे मिल गए हैं, उसके बाद वो गाना गाते थे। आप लोग बोलोगे कि हैं, किशोर दा तो बहुत खतरनाक चीज थे, हम लोगों को कुछ सीखनी चाहिए, हमारे कॉरपोरेट वाले लोग हमें कितना घसीटते हैं, कितना घिसते हैं, मतलब हम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। वेल, हम सब किशोर दा की तरह तो बन नहीं सकते, हम इतने टैलेंटेड भी नहीं है। बट द थिंग इज कि किशोर दा वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज पेमेंट्स। एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज कि ये जो गाना मैंने आपको बताया, किसका रास्ता देखे, इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए वो वहां पर पहुंचे। जी हाँ, अब वहां पर पहुंचे मतलब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचे, वहां पर सब है। जी हाँ, मतलब जो मिक्सर लगा रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग रूम में आरडी बर्मन साहब बैठे हुए हैं, वो इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, किशोर दा को गाना गाना था, देव साहब भी वहां पर बैठे हुए थे। तो देव साहब बोल रहे हैं कि अरे पंचम, देख ना ये किशोर गा क्यों नहीं रहा है, हुआ क्या है, हुआ क्या है। और देवानंद साहब ने ये अपनी ही, जैसे वो एक्टिंग करते थे, जैसे उनका वो अदायगी थी, वैसे ही वो बोलते हैं बड़ा स्टाइल से। और फिर आरडी बर्मन साहब कहते हैं कि हाँ हाँ देव साहब, वेट, मैं देखता हूँ कि किशोर दा ने क्यों नहीं आ रहे वो अंदर और क्यों वो गाना नहीं गा रहे। तो वो कहते हैं किशोर दा को बुला के कि किशोर दा आ जाइए, अब जल्दी से सब कुछ सेटअप जो है वो लग गया है, जल्दी से आके रिकॉर्डिंग कर दीजिए। अब यहाँ पर जो उनके ड्राइवर कम सेक्रेटरी अब्दुल जी, वो उनका सारा का सारा सामान जो है और सारी की सारी जो है मीटिंग्स, उनके फाइनेंसेस जो है वही संभाला करते थे। वो उनके साथ चलती का नाम गाड़ी में एक्स्ट्रा थे और वहीं से उनका साथ जो है वो शुरू हो गया था। और फिर वो उनकी जिंदगी का, उनके प्रोफेशन का ऐसे में बहुत ही अहम हिस्सा बन गए थे। तो किशोर दा बड़े ही अच्छे से कहते हैं कि अब्दुल जरा बता दे क्या पैसे हमको मिल गए। जी हाँ, मतलब वो पूछ रहे थे अब्दुल से, क्योंकि अब्दुल जी उनकी सारी पेमेंट्स वगैरह लेते थे और वो सब करते थे, और वो बिना पेमेंट लिए तो गाते नहीं थे। तो अब्दुल जी कहते हैं हाँ किशोर दा मिल गए हैं, आप गाना गाइए। जी हाँ, अब ये एक और किस्सा ऐसा भी है कि इसी दौरान किशोर दा को ये, जब हमेशा की आदत होती है कि वो रिकॉर्डिंग जो है वो पैसे मिलने के बाद ही किया करते थे, तो वहां पर वो चाय मांग रहे हैं चाय, और उनको चाय अभी दी नहीं किसी ने, मतलब उनको चेक आया नहीं, तो वो गा नहीं रहे थे। फिर उनको पता चलता है कि उनके खुद के ही प्रोडक्शन की जो है वो मूवी है, फिर कहते ओ अच्छा फिर ठीक है, फिर मैं गा देता हूँ, फिर मैं बिना पैसे के गा देता हूँ, क्योंकि ये तो खुद के ही प्रोडक्शन की मूवी। मतलब बंदा हिलेगा नहीं तब तक जब तक उनको पैसे जो है अकाउंट में दिखेंगे नहीं या उनके पास आ नहीं जाएंगे। आई थिंक किशोर दा जो है ना, वो आजकल की जनरेशन के लिए, जो बंधुआ मजदूर हमारी जनरेशन बन गई है ना, उनके लिए बहुत ही बड़ी सीख है और बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: नहीं।
1: जो सफर दिलीप साहब के साथ रहा है वो एक खुशगवार सफर रहा है, वो एक किताब की तरह है। अगर मैं बयां करना चाहूं तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, लफ्ज कम पड़ जाएंगे। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही, वेल ऑफ कोर्स मैं कहना चाहती हूँ, बट ये कह रही है उनकी धर्म पत्नी, उनकी बेगम सायरा बानो जी ने। जी हाँ, सायरा बानो जी से कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यूअर ने बात पूछी कि क्या कहना चाहेंगी आप अपने सफर के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में जो आपने दिलीप साहब के साथ जी है। तो उन्होंने यही कहा जो मैंने अभी आपको बताया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि किताब जो है, मैं जो खूबसूरत लफ्ज लिखे जाते हैं ना, वैसे लिखना पड़ जाएगा अगर मैं वो बयां करना चाहूँ जो खुशगवार जिंदगी मैंने बिताई है दिलीप साहब के साथ। और अब मैं इतना तो कहना चाहूंगी कि दिलीप साहब और सायरा बानो उन कपल्स में से एक रहे हैं जिनको देखकर मतलब ऐसा लगता है कि दे आर सो मच इन लव। यू नो व्हाट, दैट इज द परफेक्ट थिंग। सायरा बानो हमेशा दिलीप साहब के बाजू में चल रही हैं, उनके बाजू में बैठी हुई हैं अगर वो बैठे हुए हैं। मतलब आप दिलीप साहब को कभी भी अकेले देखोगे ही नहीं। जब से इन दोनों ने शादी की थी, दिलीप साहब एक पल के लिए भी आपको बाहर अकेले नहीं दिखेंगे। जी हाँ, सायरा बानो हमेशा उनके साथ कहीं ना कहीं आपको नजर आने वाली है, और यही खूबसूरती है। जी हाँ, मतलब उन दोनों का प्यार जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। और ये खूबसूरत जर्नी के बारे में उन्होंने यही कहा है। उन्होंने एक और चीज कही, कहते जब मैं छोटी थी ना तो मैं सोने से पहले अल्लाह से दो ही चीजें मांगा करती थी, एक कि मुझे मेरी वालिदा से भी ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस बनाना या उनके जितनी परफेक्ट और उनके जितनी बड़ी एक्ट्रेस बनाना, और दूसरी चीज मुझे मिसेस दिलीप कुमार बनाना। और अल्लाह ने मुझे दोनों ही दे दिए। जी हाँ, दोनों ही चीजें मुझे अल्लाह ने दे दी। मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी बन गई और मैं मिसेस दिलीप कुमार भी बन गई। इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे। जी हाँ, और इतनी खुशी से उनकी आंखों में जो ग्लो था ना, वो ये सारी बातें करते हुए, आई वाज लाइक या आई मीन शी डज लव हिम सो सो सो मच। मतलब इतना प्यार उस लेडी की आंखों में आपको नजर आएगा जब वो दिलीप साहब के बारे में बात करती है। क्या जिंदगी गुजारी है दोनों ने एक साथ। मतलब आखिरी वक्त तक भी सायरा बानो दिलीप साहब को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मतलब आज भी जब आप उनसे मिलेंगे, आप उनसे कोई इंटरव्यू करेंगे या कोई भी इंटरव्यूअर उनसे कोई इंटरव्यू करता है, तो वो अकेली नहीं होते, दिलीप साहब की तस्वीर उनके साथ में वहां पर होती है। मतलब आज भी जब दिलीप साहब नहीं भी हैं तो भी उनकी तस्वीर उनके साथ हमेशा रहती है, जब भी वो बात करती हैं, जब भी कोई इंटरव्यू देती हैं और जब भी आप उनसे मिलने जाओ। यहाँ पर ये खूबसूरत सा रिश्ता सच में हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी मिसाल है। यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सब के लिए मेरी तरफ से।

बात तो सही है भाई, बात तो सही है। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। और फिर ये तो कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। किसी की एक झलक, किसी की आंखों का वो एक इशारा, और आप उधर के उधर ही एकदम स्टैचू बन जाते हो। सो या प्यार तो कुछ ऐसा ही है। और इसी के साथ अब आपसे विदा ले रहे हैं। जी हाँ, फ्राइडे है आज, तो आज की शाम तो कितनी खूबसूरत होगी। इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। फन कीजिए, एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए, खुश रहिए। या खुश रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने आप को खुश रखिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को खुश रखोगे तभी तो आप पूरी दुनिया को खुश रख पाओगे, और अपने आसपास के लोगों को, अपने नियर एंड डियर वंस को खुश रख पाओगे। सो या दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। एंड या इसी के साथ बाय, सी यू, टाटा। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए प्यार के ही बारे में, और अगर प्यार हो जाए तो डरने की भी जरूरत नहीं है उसके बारे में। कौन सा आपने गेस कर ही लिया होगा।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvit from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ये प्यार है।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन रिवर फ्रंट का कायाकल्प करेगा लैंड लीज। जिया ब्रिस्बेन सिटी से आज सुबह की सबसे बड़ी खबर डेवलपमेंट को लेकर है। क्वींसलैंड सरकार ने मशहूर डेवलपर लैंड लीज को साउथ ब्रिस्बेन में पूर्व वीसी साइट को एक शानदार रिवर फ्रंट इलाके में बदलने के लिए चुना है। वहीं 2032 ओलंपिक से पहले तैयार होगा नया प्रोजेक्ट। इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसका पहला फेज ब्रिस्बेन में होने वाले 2032 ओलंपिक्स और पैरालंपिक खेलों से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं आज कंगारू पॉइंट ब्रिज चमकेगा हरे और सुनहरे रंग में। जी हाँ, आज ब्रिस्बेन का लैंडमार्क कंगारू पॉइंट ब्रिज खास तौर पर ग्रीन और गोल्ड रंग की रोशनी से जगमगाएगा। ये लाइट अप ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉल टीम के सम्मान में किया जा रहा है जो आज फीफा वर्ल्ड कप में अपना अहम मैच खेल रही है। वहीं फीफा वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया बनाम पराग्वे। जी हां, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला पराग्वे से हो रहा है। ब्रिस्बेन के समय के अनुसार ये मैच दोपहर 12 बजे सैन फ्रांसिस्को में शुरू हो चुका है और वर्ल्ड कप के इतिहास में ये दोनों टीमें पहली बार आमने सामने हैं। इसी के साथ साउथ ब्रिस्बेन में चोरों का आतंक, कई घरों में चोरी। ब्रिस्बेन को लोकल क्राइम से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बीती रात ब्रिस्बेन के साउथ और लोगन इलाके में नकाबपोश चोरों के एक गैंग ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने हीथवुड रनकॉन और मैनाली समेत कई इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। वहीं चोरी की गाड़ियों को लेकर पुलिस का अलर्ट। चोरी की इन वारदातों के दौरान अपराधियों ने एक सफेद रंग की मित्सुबिशी कार और एक स्कोडा कार भी चुरा ली। मैनली इलाके में एक 49 साल के मकान मालिक ने चोरों को पकड़ने की कोशिश की जिसमें उन्हें हाथ में चोट आ गई। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले अमित शाह और राष्ट्रपति मुर्मू की मुलाकात। आज सुबह की सबसे बड़ी भारत की खबर राजनीति से आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इस मीटिंग के बाद से ही दिल्ली के सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। वहीं कोटा में मंदिर की जमीन को लेकर बड़ा विवाद। राजस्थान के कोटा से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक 10वीं शताब्दी के पुराने मठ की 215 एकड़ की कीमती जमीन को लेकर चल रहे विवाद में एक पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके साथ मध्य प्रदेश में भूमि विवाद पर गरमाई राजनीति। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी पत्नी की हिस्सेदारी वाली एक फर्म द्वारा जमीन खरीदने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसके साथ उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरी का पर्दाफाश। यूपी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जहां पुलिस ने एक फैक्ट्री से कई बंधुआ मजदूरों को रेस्क्यू कराया है। छुड़ाए गए मजदूरों ने बताया कि उनसे रोजाना 20-20 घंटे काम कराया जाता था, सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता था और विरोध करने पर रॉड से पीटा जाता था। वहीं जेएनयू ने जारी की पहली मेरिट लिस्ट। हायर एजुकेशन की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने अपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आज पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इसी के साथ देशभर में मॉनसून की दस्तक और मौसम का हाल। मौसम विभाग की तरफ से देश के कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर, मुंबई और चंडीगढ़ समेत देश के बड़े हिस्सों में मॉनसून की बारिश ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले वेनेजुएला में भूकंप से मची तबाही। इंटरनेशनल खबरों में सबसे दुखद खबर वेनेजुएला से है। वहां आए दो बैक टू बैक विनाशकारी भूकंपों के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 235 हो गई। इस बीच ला गुएरा इलाके में मलबे से 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमला। ग्लोबल मार्केट और सुरक्षा के लिहाज से एक चिंताजनक खबर है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के कुछ ही दिनों बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक सिंगापुर के झंडे वाले कार्गो शिप पर ड्रोन से हमला हुआ है। इस हमले के बाद इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें अचानक 2% बढ़ गई हैं। वहीं अमेरिका और खाड़ी देशों की बड़ी बैठक, बहरीन में अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद GCC के देशों के बीच एक बड़ी मीटिंग हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खाड़ी देशों को भरोसा दिलाया है कि ईरान के साथ किसी भी डील में उनके हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। वहीं यूरोप में भीषण हीटवेव का कहर, यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज का असर है। स्पेन में पिछले 4 दिन के अंदर गर्मी की वजह से 212 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं फ्रांस ने भी अपने देश में हाई लेवल हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दी है। इसके साथ कनाडा में प्लेन क्रैश, कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज इलाके से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां जंगलों की आग बुझाने के काम में लगा एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। इस हादसे में पायलट समेत विमान के सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रूस के शैडो फ्लीट टैंकर को फ्रांस ने रोका। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने घोषणा की है कि उनकी नेवी ने सिसिली के तट के पास एक संदिग्ध रूसी शैडो फ्लीट ऑयल टैंकर को इंटरसेप्ट करके रोक दिया है। इस कार्रवाई के बाद यूरोप और रूस के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। इसके साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास, स्पोर्ट्स की दुनिया से आज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर। मेक्सिको में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका की टीम ने इतिहास रच दिया। उन्होंने साउथ कोरिया को 1-0 से हराकर अपने देश के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में जगह बना ली है। वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अन्य मुकाबले, फीफा वर्ल्ड कप से ही कुछ और नतीजे भी आए हैं। स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से हराया, बोस्निया ने कतर को 3-1 से शिकस्त दी, जबकि ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से एक तरफा जीत दर्ज करके नॉकआउट राउंड का टिकट पक्का कर लिया। मोरक्को भी हैती को 4-2 से हराकर अगले दौर में पहुंच चुका है। इसी के साथ इंडिया बनाम आयरलैंड T20 सीरीज आज से। क्रिकेट फैंस के लिए आज का दिन बेहद खास है। भारतीय क्रिकेट टीम आज से आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 सीरीज का आगाज करने जा रही है। वहीं NBA में बड़ा उलटफेर, लाफेलो बॉल का ट्रेड। जी हां, बास्केटबॉल की दुनिया से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। चार्लोट हार्नेट्स ने अपने स्टार पॉइंट गार्ड लाफेलो बॉल और जोश ग्रीन को मिनेसोटा टिम्बरवुल्व्स के साथ ट्रेड करने का फैसला किया है। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे मंडे को, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
6: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
7: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
6: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
7: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
6: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
7: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
8: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
9: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
10: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
11: The Total Focus Group Australian International Masters 2026, hosted by Queensland Fiji Football Association, QFFA, from 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane, with 32 teams already confirmed participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family, live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar, connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 a.m. टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपनी चाहती रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 107.1 FM ते जी आर जी संदेश अलग दे नाल तुसी बने होए। देखो मूवीज दी हमेशा गल करदे हुंदे आ क्योंकि मैं चाहनी हुंनी आ कि थोड़ा जिहड़ा हर टाइम हैगा ना, बेशक वह वीकेंड होवे ते बेशक वह वीकडेज हो, जदों भी तुसी थोड़ा मूड ऑफ होवे, कुछ स्पेशल करना होवे, तां कुछ देखण लई कंटेंट लभ रहे होवे, तां मैं तुहाडी हैल्प करां, तां अज मैं उही काम करूंगी। देखो जेकर तुहानू वी शार्क वर्गियां सस्पेंस थ्रिलर पसंद आउंदियां हैगियां ने ना, तां अज मैं तुहाडे लई लैके आई आ अजिहा ही शार्क मूवीज दी लिस्ट, जिन्हां तुसी घरे बैठे ओ टी टी ते देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हैं उन्हां नूं, ते जिस विच सस्पेंस थ्रिलर दे नाल नाल मिस्ट्री भी बहुत वधिया हैगी है, सच्चियां घटनावां ते आधारित भी हैगियां ने, कुछ कु सारियां ने कुछ कु, ते दसां तुहानूं इन्हां बारे दसदी आं, पर पहलां सुनो एक गीत।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर

0: Name Parmanand, a professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: The Total Focus Group Australian International Masters 2026, hosted by Queensland Fiji Football Association, QFFA. From 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane. With 32 teams already confirmed, participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family. Live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar. Connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.
1: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
3: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 107.1 ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला नाम केड़ा है इस लिस्ट दे विच? ता अगला नाम है जी द रीफ आई सी 2010 दे विच। ता बहुत शानदार फिल्म है। कहानी मैं तुहानू पहला दस दिनी है। ता कहानी दी जे गल करिए ना तो ऑस्ट्रेलिया दे समुंदर विच एक किश्ती है जिहड़ी पलटन तो बाद ना दोस्तां दा एक ग्रुप गहरे पानी विच फस जांदा है। उन्हां नू किनारे तक पहुंचण दे लई तैरना पैंदा है पर एक विशाल शार्क उन्हां दा पिछा शुरू कर दिंदी है। इह फिल्म इसे दे इर्द गिर्द घूमदी है किवें शार्क तो बचदे ने, कौन बचता है कौन नहीं बचता, इह सब कुछ तुहानू इस फिल्म दे विच देखण नू मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। इस नूं तुसीं नैटफलिक्स ते नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इसलिए तुहानू देखना पैणा है एमाजोन प्राइम वीडियो।

0: जी आनु, जी आनु, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो पर सोनी वंसरों वाले हम तेजी आज चेस संदेश अलग दिनाल तो सीम बने हुए हम अगला नाम है जी ओपन वाटर 2003 दे विच आई सी ए सच्ची घटना ते आधारित फिल्म है कि एक क्या हाँ जानता है गाय जी मैं तो उन्होंने स्टार्टिंग दे विच कहा सी कि कुछ कु फिल्म सच्चिया घटनावां ते आधारित है ते उन्हां दे विचों एक है तो हुण जे मैं कहानी की गल करा ना तो कहानी एक कपल की है एक कपल ना स्कूबा डाइविंग के दौरान गलती नाल समुंदर विच इकला छुट जांदा है इस तों बाद उसके चारे पासे शाक जमा होण लगदियां ने ते इसे तेल तक कहानी फिर शुरू हुंदी है कि वह शाक तो किवें बचते है क्योंकि शाक तो बच पाना ही ता सब तो ज्यादा खतरनाक सीन है किवें बचते ने किवें नहीं बचते इस बारे जानना हुंदा है ते इसनू तुसी किथे देखना है इनू तुसी देखना है जी ओटीटी प्लेटफॉर्म एमेजोन प्राइम वीडियो ते उत्थे इंजॉय कर सकते हो
1: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसानी वनसर वाले हम ते चार चे संदेश अलग दे नाल बने हुए। इस लिस्ट दे विच अगला नाम केड़ा हैगा? तां अगला नाम हैगा जी द शैलो। 2016 विच आई सी फिल्म, बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा सोहनी है, इंटरेस्टिंग भी है। तां इस दी कहानी मैं तुहानू दस दिंदी आ। तां कहानी विच ना एक कुड़ी तट तो कुछ ही दूरी ते बनी एक चट्टान ते फस जाती है। उसके होर किनारे दे विचकार एक विशाल शाक पैरा देरी हुंदी है। एक छोटी जी दूरी नू पार करना एक रोमांच नाल परी कहानी नू जन्म दिंदा हैगा। ते यही तो इसकी कहानी है कि वह कुड़ी किवें पार करूगी, क्योंकि उत्थे तां शार्क है की है। ये कहानी जे तुसी देखनी है कि किवें की कुछ होगा, तो इसके लिए थानू नैटफ्लिक्स से जरूर जाना पैना। यह हॉलीवुड फिल्म हैगी है, प्राइम वीडियो ते नेटफ्लिक्स दोनों ते तुसी इसनू इंजॉय कर सकते हो।

0: containers for change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. Containers for Change ke madhyam se apne khali dibbe botlon se dhan rashi kamaye. आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है. इसे हम बिनकॉइन कहते हैं. अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें. आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है. बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में. अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें.
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहें अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो. तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है. इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां. अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ. तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है. बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच. अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो.

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार आई एम सो वरीड, आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मानो।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा।
0: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
0: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। OMSORG, caring with dignity.
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: जीवन से भरी तेरी आँखें,

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

जानकी जी और लक्ष्मण। वनवास समाप्त करके वापस आए और भरत को वनवास कथा सुना रहे हैं कि देखो भरत हमारे साथ क्या क्या हुआ। रावण वध भी हुआ और ये कौन कौन से लोग जिन्होंने हमारी सहायता करी उसमें, सबसे परिचय कराया। और जब प्रभु ने परिचय कराया हनुमान जी का तो नेत्र भर आए प्रभु के और बोले भरत ये जो कपि हैं, ये जो हनुमान हैं, इन्होंने हम पर जो ऋण चढ़ा दिए हैं उनसे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते, उनसे कभी उऋण नहीं हो सकते। भरत भाई कपि से उऋण हम नाहीं।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506।

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमक प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 बजे आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 बजे संगीत सरगम नामक कार्यक्रम

जय मित्रों, इस समय 28 मिनट रह गए हैं 7 बजने में और संगीत सरगम प्रोग्राम में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। स्टूडियो का नंबर है 3279-1701 और मेरा मोबाइल नंबर है 0411-127-035। दोबारा सुनिए 0411-127-035। और हमारे यहाँ शनिवार के सुबह है 27 तारीख जून 2026 है। भीगा भीगा मौसम हमेशा की तरह आज भी है और मौसमी दफ्तर ने निम्न मौसम के खबर हमें प्रदान किए हैं, जिसके अनुसार कहा गया कि साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में ज्यादातर भीगा भीगा मौसम ही रहेगा। ब्रिस्बेन में हल्की बारिश होगी। 19 दिन में रात्रि को 13, हवा का रफ्तार 11 और 6:40 पर सूर्य उदय होगा, 5:03 पर सूर्यास्त होगा। और इप्सविच में 19 रहेगा दिन में, रात्रि को 11।

हाउस में। ओकलैंड में धूप निकलेगी और 16 दिन में रात्रि को 10 हवा का रफ्तार 18। 7:30 बजे सूर्य उदय हुआ है, 5:12 पर सूर्य अस्त होगा। फिलहाल चलते हैं भारत द्वीप। नई दिल्ली में हल्की बारिश होगी, 41 मैक्सिमम 33 मिनिमम 13 विंड स्पीड। 5:26 पर सूर्य उदय होगा, 7:23 पर सूर्य अस्त होगा। मुंबई में बारिश होगी 31 दिन में रात्रि को 28 हवा का रफ्तार 18। और अमृतसर में धूप निकलेगी, 39 मैक्सिमम 31 मिनिमम 8 विंड स्पीड। अब चलते हैं फिजी द्वीप, जहां पर नेडी में 6:40 पर सूर्य उदय हुआ है और फिर 6:15 सूर्य अस्त होगा। ज्यादा धूप निकलेगी 26 दिन में रात्रि को 22 हवा का रफ्तार 24। लंबा समय ऐसा ही मौसम रहेगा, 28 दिन में रात्रि को 21 हवा का रफ्तार 16। और सुबह में हल्की बारिश होगी, 24 दिन में रात्रि को 21 हवा का रफ्तार भी 21। तो ये थे कुछ स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के मौसम के खबर। क्या चल रहा है भाई, कैसे हो आप सब, और क्या बात है। अमला जी गुड मॉर्निंग, मौसम भीगा यहाँ पर, होपफुली आपके यहाँ भी ठीक होगा। चलो आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हुए आज का पहला जो गीत है वो मैंने लिया है वक्त, द राइस अगेंस्ट टाइम जिसको बोलते हैं। उस फिल्म में बहुत ही बढ़िया बढ़िया गाने थे, और जो गीत आपके लिए लेकर आया हूँ उसे उदित साहब अलका जी के साथ अदा कर रहे हैं। सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे।

0: जय मित्रों, हम तुम्हारे प्यार में बस जीते मरते जाएंगे, क्या बात है। सही बात है ना, होता है कभी कभी जब हम बहुत घनिष्ठ प्यार में होते हैं किसी के साथ, तो ऐसे ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं खबर के साथ, पहला खबर सुनाते हैं, फिर मिले जुले गीतों में कुछ टॉप गाने चार पांच आप सुनेंगे 90s के और 2000 के हिट्स।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: मित्रों, एक ही 8 बजा, मैं सोचा 2 बजेगा, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं गीत के साथ। तो अगला जो गीत है वो है कुछ कुछ होता है फिल्म का शीर्षक गीत, और ये बहुत प्यारा सा गीत है, अपने समय में बहुत, आज भी उतने लोकप्रिय है जितना उन दिनों था। और इसे एक बार फिर उदित साहब आ रहे हैं अलका जी के साथ, चलो सुनते हैं इसे। और अमला जी, एन्जॉय योर लवली ड्राइव। आप बोल रहे हैं थोड़ा भीगा भीगा मौसम है यहाँ भाई, यहाँ तो क्या बोलें, बारिश होने का तो चलता ही है, रुकने को तो थमता भी नहीं है, रुकता भी नहीं है। आज शनिवार है तो शनिवार को लोग सोचते हैं कि चलो गार्डन में कुछ काम कर लें और मोटोमोवा चला दें, तो मुश्किल होगा कई केंद्रों पर क्योंकि बारिश हो रही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, मजेदार गीत का आनंद लीजिए।

जी मित्रों, 13 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। परमानंद के साथ आप संगीत सरगम नामक कार्यक्रम को सुन रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। कहो ना प्यार है, आप जानते हैं कि सुपरहिट मूवी थी, सुपरहिट गाने थे और इस फिल्म में कई लोगों ने बहुत ही दिलचस्पी से गीतों को सुने और खुश हुए। तो चलो आज फिर एक बार फिर हम आज अलका जी का ज़्यादा गीत ला रहे हैं ना आपके लिए, तो चलो इसको पहले सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे।

0: ये मित्रों 7 मिनट रह गए हैं 7 बजने में और आगे बढ़ते हैं विज्ञापन की तरफ। तो विज्ञापन आपके लिए बजाते हैं, फिर हम प्रोग्राम में कुछ और मजेदार गीत लेकर आएंगे आपके लिए।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
0: और मित्रों 6 मिनट रह गए हैं इस समय 7 बजने में, आगे बढ़ते हैं। एक और मजेदार गीत है, जो जीता वही सिकंदर से मैंने इसे लिया आपके लिए। इस बार उदित जी के साथ दे रही हैं साधना सरगम जी, पहला नशा पहला खुमार।

जय मित्रों, पहले नशा पहले खुमार एफएस सेगमेंट का गीत था जो अब हम संपन्न किए हैं। और आपसे कह दूं कि आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं, और खुशी की बात है कि आप तो जानते हैं कि अलका याग्निक जी को पद्म भूषण मिला था और लोग उसको व्हील चेयर पर देखे तो कह रहे हैं कि उनका एक कान में कुछ शिकायत है, कोई तरीका बीमारी है जहाँ पर वो सुन नहीं सकती अच्छी तरह से, तो उसका ये मुख्य कारण था। 60 साल की हो गई हैं तो उनको हम बधाई दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गीतें अदा करती हैं, कई गाने इनके सुपरहिट हुए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और इलाज पा जाएं वो इनका जो है। और आप रेडियो ब्रिजबानी को ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, brijbani.com पर चले जाएं और वहाँ पर जाकर आप देखें और लाइव दबाएं बटन, जहाँ पर आ गया ब्रिजबानी लाइव वो दबाएं, सुनने लगोगे। थोड़ा सा कुछ कार्य हो रहे हैं जहाँ पर आपका ऐप जो है वो अभी भली भांति काम नहीं कर रहा है, लेकिन गाड़ियों में और घर में रेडियो पर आप इसको बहुत साफ सुथरा सुन सकते हैं। मौसम आज भीगा भीगा रहेगा साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में, और तो कुछ कहना नहीं है। और चलें हम आगे बढ़ते हैं, पुराने गीतों का कार्यक्रम का समय आया जबकि 7 बज चुका है रेडियो ब्रिजबानी के घड़ी में, और अभी से लेकर ठीक 7:15 तक हम कुछ पुराने गीत आपके लिए पेश करेंगे। अब जो गीत आया है उसे रजेश खन्ना जी और तनुजा जी पर फिल्माया गया था, आरडी बर्मन जी का संगीत है और आवाज़ सदाबहार गायक नटखट कलाकार किशोरदा का, सुनते हैं जी, आनंद लीजिए।

0: जी मित्र, क्या बात है। कभी कभी होता है ना, किसी के ख्याल में हम चले जा रहे हैं, सोचते रहे हैं, अंदर अंदर बहुत सारे बोलते हैं, खिचड़ी पकती रहती है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या बोलेंगे, और एक एक दृश्य सामने आता है। तो ये था बहुत ही बढ़िया सा गीत किशोर कुमार जी की आवाज़ में। चलते हैं, दो खबर सुनते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज कुछ ज्यादा किशोर जी के गाने हैं।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
0: मित्रों, 7 मिनट हुए हैं 7:00, चले आगे बढ़ते हैं। परमानंद का ही साथ है आप और मेरा, और बहुत हमारे यार दोस्त प्रोग्राम को सुन रहे हैं, गाड़ी में सफर कर रहे हैं, और कुछ अपने घर बैठे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। जब कुछ फंक्शंस होता है, पार्टियां होती हैं, या कभी फोन करके बोल देते हैं कि भाई प्रोग्राम सुन रहा था, तो चलो आप सबका स्वागत है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर किशोर दा रहे हैं पर्दे पर, राकेश रोशन जी हेमा मालिनी के सामने, और आवाज़ है किशोर कुमार जी का। अब क्या होगा ना, किसी के धुन में हम चले जा रहे हैं, लेकिन जब मुलाकात होगी तो क्या सोचोगे, क्या करोगे?

0: खबर। जी मित्रों, आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। बहुत प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे और हम चलते हैं दो विज्ञापन की तरफ, फिर आगे बढ़ते हैं हम भाई। और उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक जो गाने बजाए हम आपको अच्छा लगा होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं विज्ञापन की तरफ। क्या बात है,
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन क्वाइन कहिंदे हां। अपने बिन क्वाइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
0: तो मित्रों, ये सुनने के बाद 14 मिनट हुए हैं 7 बजकर, और पुराने गीतों को जारी करते हुए हम चलते हैं आगे। अब जब ऐसा हो गया, मुलाकात किसी से हो गई, तो लता जी किशोर कुमार जी क्या कहते हैं, चलो सुनते हैं। बहुत पावरफुल सॉन्ग है जी, अच्छा लगता है। अगर मौसम प्यारा हो और साथ में कोई प्यारा साथी हो तो क्या बात है।

0: जय मित्रों, जाने मन तुम कमाल करती हो, क्या बात है। बहुत खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। चलें आगे, एक विज्ञापन को बजाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और चलो इसे सुनते हैं।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो।
0: तो मित्रों, आप
1: क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ, ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
0: तो मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, हमारे साथ पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी आए हुए हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं। पंडित जी, रेडियो ब्रिजबानी पर तहे दिल से स्वागत है आपको, मेरा सादर प्रणाम। श्रोतागण की तरफ से नमस्कार।
2: शर्मा जी, आपको भी प्रणाम, सभी सुनने वालों को नमस्कार। और आज सुंदर सा मौसम है, सूर्य नारायण उग चुके हैं, उजाला है कुछ, जैसे आपने कहा मौसम में भीगा भीगा मौसम रहेगा, कल भी जैसे था ना
0: जी।
2: तो इसी तरह मौसम तो आता है जाता है, हम अपने काम काज करते रहते हैं और समय, साल भी आधा साल बीत चुका है, जून महीना का अंतिम चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारा जो कार है, जीवन है, वो तो सब चलता ही रहता है। वर्मा जी, कभी कभी लोग प्रश्न उठाते हैं जो हमारा तिथि है, जैसे इस साल जून का जो महीने का, आप देखे होंगे कि ये जो हमारा मई और जून में हमारा जो भारतीय संस्कृति है और कैलेंडर है, वो एक ही महीना था, ज्येष्ठ महीना, जो हम लोग अधिक मास बोलते हैं, तो अधिक मास खत्म हुआ और इस पूर्णिमा को ज्येष्ठ मास भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे कैलेंडर में दो महीना चला लेकिन हमारा एक ही नाम से चला, ज्येष्ठ मास के नाम से, वो भी 30 तारीख को खत्म हो जाएगा जून को। तो और एक और प्रश्न कभी कभी लोग पूछते हैं, जो पंचक होता है, पंचक जो नक्षत्रों की होती है, पांच नक्षत्र इकट्ठा हो जाते हैं एक के बाद दूसरा, तो उसी को पंचक कहते हैं। और पंचक में कभी कभी लोग पूछते हैं कि हम घर का निर्माण करें या कुछ नया चीज खरीदे इत्यादि, तो पंचक केवल हमारा जो मृत्यु के समय है, पंचक केवल मृत्यु के समय जोड़ा जाता है और कार्य में पंचक नहीं है, हर महीने में पंचक भी आती है। तो परमा जी, ये कुछ कभी कभी लोग हमें भी पूछते हैं कि ये सब क्या है, तो जैसे हम समझाए कि पंचक केवल मृत्यु के समय जोड़ा जाता है और बीच में नहीं जोड़ा जाता है, तो यही एक खास बात थी। और फिर अब हमारा जो आगे का जो महीना चल रहा है, धीरे धीरे साल भी आधा हो चुका है परमा जी, और जून जुलाई में और कुछ और खास तो नहीं है, लेकिन बाद में अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का समय आने वाला है जो सितंबर में होगा, वैसे अक्सर अगस्त में आता है अष्टमी, लेकिन ये जो अधिक मास होने के कारण या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है, उसके कारण सभी कुछ हमारा एक महीने से पीछे चला गया है। दीपावली भी आप अगर देखेंगे तो दीपावली 8 नवंबर को होगा, तो सभी कुछ खसक गया है एक महीने से पीछे। और फिर 3 साल में धीरे धीरे धीरे हर एक साल में 10 दिन आगे को बढ़ता है हमारा साल, फिर इसी तरह से दीपावली, फिर अगले दीपावली जो है हमारे अगस्त के एंड में आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारा जो जयंती है या लोग पत्रा बोलते हैं, इसी का निर्माण होता है परमा जी।
0: पंडित जी एक बात है, पंचक में क्या ब्याह कर सकते हैं लोग, शादी वगैरह कर सकते हैं?
2: जी हाँ, वो हो सकता है, लेकिन मृत्यु में, पंचक केवल मृत्यु अंत्येष्टि संस्कार में जोड़ा जाता है, और जगह पर नहीं।
0: अच्छा अच्छा, क्योंकि कभी लोग बोलते कि नहीं हम नहीं कर सकते कुछ ऐसा ब्याह वगैरह, तो इसलिए मैंने सवाल किया।
2: उसी के कारण तो हम आपसे भी वो बात को छेड़े, क्योंकि हरदम लोग हमें रिंग करते हैं कि हमें गाड़ी खरीदना है, हमें मकान का सेटलमेंट करना है, उससे कोई लेना देना नहीं, उससे केवल शुभ दिन देखना चाहिए बस।
0: अच्छा, तिथि वगैरह ना।
2: जी हाँ।
0: एक चीज और मैं पूछना चाहता था। मैं हमेशा ये देखते रहता हूँ, बोलते ग्रह यहाँ चला गया, वहां चला गया, ये प्लेनेट ऐसे ऐसे हो गया, ये हकीकत में सच बात है कि ये प्लेनेट के कारण हमारा राशिफल जो है वो हमें अलग अलग स्थान पे ले जाकर बैठाता और बोलता तुम्हारा ऐसे रहेगा वैसे रहेगा, इस पर कुछ टिप्पणी कर सकते हो संक्षिप्त में?
2: जैसे हमारा मौसम है ना
0: जी,
2: चिंता है, समा है, तो कुछ ना कुछ असर तो हमारे ऊपर लाता है, और मौसम कैसे बदलता है हम देखते हैं कि जो हमारा धरती है वो दो तरह से मूव होता है ना,
0: जी
2: ओसिलेशन और सेकुलेशन होता है।
0: जी
2: तो उसी तरह से जो हमारे ग्रह मंडल है ना, सभी में कुछ ना कुछ इधर उधर का मूवमेंट होता है, तो वही मूवमेंट और धरती जो इनके अराउंड सेकल लेती है जब
0: जी,
2: और तभी ग्रहों का छाया बोलते हैं ना,
0: जी
2: जैसे एक पेड़ के छा में अगर खड़े हो जाओ तो आपको आराम मिलता है ना,
0: जी जी
2: जगह पर आप पूरे 12 बजे दिन में धूप में खड़े रहो तो आपको गर्मी लगता है। तो वही जो हमारा क्या बोलते हैं ग्रह मंडल है ना, जो 9 प्लेनेट्स है
0: जी,
2: का जो शेडो है उसी तरह शेडो हमारे ऊपर पड़ता है, और हमारे जो राशि है, हमारे नक्षत्र है, उसी में सब जोड़ा जाता है। तो ये साधारण बात नहीं है कि वो जो हमारे 27 नक्षत्र हैं और 9 राशियां हैं और इसी तरह से सबको मिलाकर ये सब होता है, तभी लोग बोलते हैं कि हमारा दिन तारीख ऐसे बदलता है, हमारे ऊपर दुख संकट आती है। वो आती है क्योंकि जैसे हमने छाया की बात कही ना
0: जी,
2: आप धूप में खड़े होंगे तो आपको बोलते कैसा होगा,
0: हाँ,
2: और वही आप पेड़ के छा में चले गए तो आप बच गए ना
0: जी।
2: तो उसी तरह हमारे जो राशियां हैं, नक्षत्र हैं, और इसी तरह से उसका भी असर हमारे ऊपर जरूर पड़ेगा ना।
0: जी जी, समझ गया।
2: जैसे सूर्य के किरण में खड़े रहो तो प्रॉब्लम होता है, इसी तरह से राशियों का भी असर हमारे ऊपर आता है। और आप देखते होंगे शायद फिजी वाले बोलते थे सौ नकिया या सौ कुछ ऐसे शब्द बोलते थे जो फुल मून के दिन होता है।
0: हाँ हाँ, समझ गया।
2: तो देखते हैं फुल मून के दिन कुछ कुछ लोगों का दिमाग बदल जाता है ना, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है उनका भी हालत बिगड़ता है
0: जी,
2: जैसे जुहार चढ़ता उतरता है ना
0: जी। हाँ।
2: तो कहते हैं कि हमारे जो बॉडी जो स्पाइनल फ्लूइड है ना, जो दिमाग में पानी भरा हुआ है
0: जी,
2: वो पानी का भी उसी तरह से असर पड़ता है, दिमाग को खींचता है चंद्रमा, उसको भी असर वही तरह आता है, तो हमारे ऊपर उसका जरूर असर आता है परमा जी।
0: चलो, बहुत बढ़िया पंडित जी, आपने विस्तार से बहुत बढ़िया से समझा दिया। लोगों लोग पूछते रहते कि क्या प्रभाव पड़ता है ना, ऐसा क्यों वैसा क्यों
2: पड़ता है ना। जैसे हम लोग एक मूर्ति रखकर पूजा करते हैं, एक मंत्र बोलकर उसका चाहे जाप बोले या हवन करते हैं या यज्ञ करते हैं, तो उसका तो क्यों हम करते हैं कि उसका हमें बेनिफिट मिले, उसका असर हमारे ऊपर आए ना
0: जी,
2: वातावरण शुद्ध हो हवन करने से। तो अगर वैसे है तो हवन भी ना करें ना
0: जी, हाँ,
2: फायदा क्या है उसका, तो जरूर असर आता है।
0: ठीक है,
2: कुछ ना कुछ तो जरूर हमें उससे असर आता है परमा जी।
0: जी हाँ,
2: चलते हैं, फिर मुलाकात होगी।
0: जी हाँ पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा लंबा हम विषय पर आ गए थे, बहुत बढ़िया लगा, लोग जरूर संतुष्ट।
2: कभी कभी हमें भी फोन के ऊपर फोन आते रहता है तो हम सोचे कि आज चलो इसी पे बात कर लेते हैं।
0: जी हाँ, ना बहुत अच्छा किया आपने, और आपका दिन, परिवार का दिन खूबसूरती से गुजरे, और अब मैं यही देख रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, टैक्स का चक्कर चलना शुरू होगा, और फिर नए साल देखते हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है पंडित जी। धन्यवाद
2: जी,
0: प्रणाम आपको एक बार फिर
2: आशीर्वाद जी,
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद
0: जय हो। तो मित्रों ये थे पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी, बहुत अच्छी तरह से विस्तार से बतलाएं, तो जो शंका आप लोगों को थी आहिस्ते आहिस्ते दूर हुई होगी। चलो एक विज्ञापन लेते हैं फिर एक और मजेदार गीत।
3: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: मित्रों इस समय 29 मिनट हुए हैं 7:00 और हम आगे बढ़ते हैं। चलें एक और गीत ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम। कई बार जीवन में देखिए बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ हम सोचते रहते हैं। एक गीत मिला है, दिवट है, उषा खन्ना जी और रफी साहब का अदा किया गया, और बैठे रहते हैं एकांत में, अकेले बैठे रहते हैं, पुराने बातें, बीती हुई कल सब याद आते हैं, इतनी साफ सुथरा तरीके से याद आते हैं। हम उसी में बस क्या बोलते हैं कि बस उसी में बंध जाते हैं और फिर सोचते हैं कि वो दिन अगर आता तो कैसा होता। तो चलो ये रोमांटिक गाना है, आप सबके लिए बजा रहे हैं पुराने गीतों में।

0: ये मित्रों फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, ए दिल किसको दूं, 1963 फिल्म का ये लोकप्रिय गीत अभी आप सुन रहे थे। और इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में 26 मिनट रह गए हैं 8 बजने में। परमानंद का साथ है, संगीत सरगम नामक कार्यक्रम है और हम अब आपको ले चलते हैं जन्मदिन की खबरों की तरफ। उन्हें याद कर रहे हैं जिनका आज जन्मदिन है, आपको मुबारकबाद हो भाई, बहुत सारी बधाइयां हो जन्मदिन के खूबसूरत अवसर पर। जिनकी शादी की साल गिरा है, मालिक से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जोड़ी सदा सलामत रहे, खुश रहें, प्यार से रहें और हंसी मजाक करते रहें। तो चलो खबर पेश करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे नए गीतों के साथ।
1: यार राहुल तेरे के

0: में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: जी मित्रों, आगे बढ़ते हैं, चले आगे. और आगे बढ़ते हुए एक नया गाना है इस बार, गुलशन कुमार टी सीरीज प्रेजेंट्स, लिखा हुआ है शिल्पा राव और वायु. नोरा फतेही जो है ए पर्दे पर, ए बाबा गीत के बोल हैं. चलो आनंद लीजिए, पहली बार बजा रहा हूं मैं ये गीत आपके लिए.

0: जी मित्रों, गीत के साथ साथ लगभग 21 मिनट रह गए हैं 8 बजने में। 8 बजे रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया में आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल हम चलते हैं विज्ञापन की तरफ, तो चलें सुने ये विज्ञापन।
1: आर यू रेडी टू स्टॉप रेंटिंग एंड थिंकिंग अबाउट ओनिंग वन और मे बी एन इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built

0: मित्रों, रेडियो ब्रिजबानी की घड़ी में 7:45 हैं। रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान, जिसका प्रसारण हम 1700 AM के माध्यम से 7 माइल रोड्स ब्रिजबान ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं।
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
0: जी हाँ दोस्तों, एक खबर था और आगे बढ़ के एक और खबर ले लेते हैं।
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
0: अब आगे बढ़ते हैं। सुनो निगम, औसरिया घोषाल जी की आवाज में हसमत पगली प्यार हो जाएगा।

0: जी मित्रों, ये गीत अगर आप अच्छी तरह से सुने, गीत के बोल जिस तरह से कलाकार इसे अदा कर रहे हैं, तो ये लगेगा कि बहुत स्मूथ जा रहे हैं, बहुत रिलैक्स इस गीत को गा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बतला दूं कि व्हेन यू लिसन रियली इंटेंट से लिसन करें, खूब अच्छी तरह से सुने, तब आपको पता चलेगा कि कितने ध्यान से गा रहे हैं, कितने सुकून से गा रहे हैं, रिलैक्स होकर गा रहे हैं। They are really in love with each other. क्या बात है, सुन हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, प्यारा सा गीत रेडियो ब्रिजबानी पर आप सुन रहे थे। और आगे बढ़ते हैं विज्ञापन के तरफ, बजाते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

ये मेरे ब्लाउज का बटन एक खुला ही रह गया, आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं। एक और गीत थोड़ा सा है, बजा देते हैं इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ये बहुत खूबसूरत सा गीत है और इसको बजाते हैं आपके लिए मित्रों। रेडियो ब्रिज वाणी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान, मैं परमानंद हूँ संगीत सरगम प्रोग्राम के साथ। तो चलो आगे बढ़ते हैं, गीत का आनंद लेते हैं।

0: मित्रों, 8 बज चुके हैं और अब समय हुआ स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम का। और स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम रानी क्रिएशंस का जो साप्ताहिक कार्यक्रम है फैशन की दुनिया, उसी को हम लेकर आपके सेवा में उपस्थित हुए हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम हम आपको भेंट कर रहे हैं। और अभी से लेकर ठीक 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया आप सुन सकेंगे। चलो विज्ञापन के साथ हम शुरू करते हैं प्रोग्राम।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: और मित्रों, जी हाँ, आपको बतला दें कि रानी क्रिएशन शॉप सप्ताह के 7 दिन खुली रहती है। और वैसे माताएं जो हैं, जब बच्चे पाठशाला जाते हैं तो मुश्किल होता है उनको शॉपिंग करने का, लेकिन अब छुट्टियां आ रही हैं सोमवार से, तो छुट्टी रहेगी। माता पिता जो हैं वो बच्चों को लेकर अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं तो शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और खुशी की बात है कि रानी क्रिएशंस में अप टू 50% ऑफ सेल चल रहा है इस समय। फाइनेंशियल ईयर एंड सेल जो है, यहाँ पर आकर पैसों का बचत कर सकते हैं। सब कुछ आपको एक छत के नीचे मिलेगा, अंडर वन रूफ यू विल गेट एवरीथिंग। सारीज, कुछ सारीज क्लियर हो रहे हैं एट $15। जी हाँ, सही सुना आपने, $15 में साड़ी बिक रहा है। और ज्वेलरी जो है फ्रॉम $16 सेट। तो जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर सेल चल रहा है, पैसा का बचत होगा। और आंख से देखकर आप मन पसंद के कपड़े, चाहे शादी कर रहे हो, चाहे कोई पार्टी में जा रहे हो, या कुछ कैजुअल चाहते हो, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो स्वागत है एक बार फिर, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम हम आपको भेंट कर रहे हैं। शनिवार है, भीगा मौसम इस समय है। और रानी क्रिएशन शॉप में आएंगे तो घरेलू वातावरण के अंतर्गत आप शॉपिंग करेंगे और यहाँ पर पार्किंग का भी चिंता नहीं है। और वेबसाइट पे जा सकते हैं ranicreations.com पर, गिफ्ट वे भी वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो याद रहे इन बातों को। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला आज जो गीत है वो मैंने लिया हूँ रनिंग शादी से, बप्पी लहरी जी और साथ ही इसे अदा कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा ये गाना।
2: म्यूजिक बजा देगा तो समझिए कंकाल भी डांस करता है, ऐसा वाला खेल
3: बढ़िया अरेंजमेंट हो गया।

जय मित्रों, कैसे लगा? रनिंग शादी से इस गीत को हमने बजाया था और फनी है, बहुत फनी पिक्चर है ये। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक और इसी प्रकार का गीत है आपको सुनवाएंगे और उम्मीद कर रहा हूँ ये भी गाना आपको पसंद है। आप सुन रहे हैं रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया। चलो आगे बढ़ते हैं गीत के साथ, और गीत के बोल हैं मेनालेस मजनू।

0: जय मित्र, बहुत अच्छा लगा मेरे को। उम्मीद कर रहा हूँ आप भी एंजॉय किए होंगे गाना। कभी कभी ऐसे गीत हम आपके लिए छेड़ देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे और दिन भर इसे गुनगुनाते रहें आप। चलें रानी क्रिएशंस का खबर।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: जी मित्रों, आपने सही सुना, 33 Balaclava Street Ulangeba में स्थित है Rani Creations, जहां पर end of financial year sale चल रहा है और यहां पर आपको sarees are going from $15 each, jewelry from $16 set. इसके साथ साथ अप टू 50% ऑफ डिस्काउंट बाकी कपड़ों पर है, जिस पर आपको बहुत सारा पैसे का बचत होगा। आंख से देखा, टेस्ट किया, कपड़ा अच्छा लगा, खरीदे तो पहनोगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप विज्ञापन सुन रहे हैं और ऑनलाइन भी जा सकते हैं आप गिफ्ट वेयर के लिए ranicreations.com पर, और वेबसाइट पर जाकर देखें कि क्या क्या यहाँ पर गिफ्ट वेयर है, तो ये सब भी आप खरीद सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं अंतिम गीत ए सेगमेंट का, चलते हैं तौबा तुम्हारे इशारे। कौन गा रहा है? अभिजीत साहब, सुनते हैं।

0: तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया, और याद रहे यहाँ पर फन ऑस्ट्रेलिया सेल चल रहा है, जहाँ पर आप साड़ीज फ्रॉम $15, ज्वेलरी सेट फ्रॉम $16, और इसके साथ साथ फन ऑस्ट्रेलिया सेल पर आपको बहुत बड़ा छूट मिल रहा है, अप टू 50% ऑफ, और हर प्रकार के कपड़े वगैरह यहाँ सजने सजाने के लिए ज्वेलरी वगैरह है, और बहुत सारे एक्सेसरीज भी हैं जो आप ऑनलाइन भी जाकर देख सकते हैं रानीक्रिएशंस.com पर। अगले शनिवार तक आज्ञा दें। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660। आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच।
3: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं,
4: तो उमसॉक से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है, और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448-381-360 है, और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
5: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
7: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
6: अच्छा, वो क्या?
7: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
6: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
7: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: और दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलें। सुनो, निगम जी का द्वारा अदा किया गया बहुत ही लोकप्रिय गीत कल होना हो का शीर्षक गाना आपके लिए। और जीवन में ऐसे ऐसे गीत हैं, बहुत कुछ हमें सिखाते हैं, बहुत कुछ बदलाते हैं, अपने रवैया हमें बदलना चाहिए, आदतें बदलना चाहिए, और खुशी खुशी जीने की कोशिश करें, मालूम नहीं कल क्या होगा।

ये मित्रों हर पल यहाँ जी कर जियो क्या है, चलें किशोर कुमार जी द्वारा एक गीत है उसे मैं बजाना चाहता था और इसे हम बजाएंगे और इसके बाद समाप्ति पर चलेंगे और निविया जी हो जाएंगी उसके बाद आपके लिए, ठीक कितने बजे से? 8:30 बजे से। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये गाना मैं सोचा आपको सुनवा दूं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, कभी नहीं आते। आप सबके लिए परमानंद की तरफ से।

कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरशे निविया के साथ। सबसे पहले हैप्पी वीकेंड। जी हाँ, वीकेंड मनाने, आपको मजे करवाने और आपको वाइब में लेकर जाने और नचाने और गवाने सब करने हम आ गए। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा वाह वाह वाह, नचाने और गवाने भी। वेल हाँ, गाइए अगर आप अच्छा गाते हैं। अगर आप अपनी आरशे निविया की तरह गाते फिर मत गाइएगा जी हाँ, क्योंकि मेरी गायकी तो इतनी खतरनाक है कि मेरे लिसनर्स ने खुद ही मना कर दिया कि निविया शर्मा तुम गाया मत करो। जी हाँ, तुम गाया मत करो। सो ठीक है, मैंने तो मान लिया, लेकिन अगर आप भी मेरी तरह गायकी करते तो मत कीजिएगा। लेकिन इनके हिसाब थोड़ा सा सुरीला गाते हैं तो गाइए, बिल्कुल गाइए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के ये जो 10 चुनिंदा गाने होने वाले हैं ये आपको गाने पर भी मजबूर करने वाले हैं, डांस करने पर भी मजबूर करने वाले हैं, और तो और आपको अच्छा अच्छा भी फील करवाने वाले हैं। प्लस आपको अपडेटेड रखेंगे, मतलब आपको वो चुनिंदा गाने हम लेकर आए हैं जो कि अपडेटेड है, जो कि हॉट है, जो कि ट्रेंडिंग है। पुराना कुछ नहीं है, सब कुछ नया है और सब कुछ मजेदार है, चुनिंदा है। और तो आइए बिना देर किए, बिना बिल्कुल भी देर किए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की, क्योंकि ये है टॉप 10 हॉट 10, मतलब 10 चुनिंदा गानों के साथ हम आ गए हैं। अब ये प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे 10वें नंबर के गाने के साथ। जी हाँ, 10वें नंबर के गाने के साथ शुरुआत होगी, जो कि बड़ा ही प्यारा सा हैप्पी गो लकी टाइप का सॉन्ग है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ वो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपने दादी की शादी मूवी देखी है, सबसे पहले आप ये बताइए, दादी की शादी मूवी देखी है आपने? नहीं देखी तो देख डालिए, क्योंकि अब आपको जल्द ही वो मिलने वाली है। कहाँ? I'm gonna tell you about that, पर पहले सुनो ना दिल। आहा, बिल्कुल यही है गाने का नाम, 10वें नंबर का गाना इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का।

जी दोस्तों, तो इसी के साथ ये खूबसूरत सा गाना जो आपने सुना, ऑल द मूवी जो है वो फ्लॉप हो गई है सिनेमा घरों में, लेकिन कुछ लोगों को मूवी बहुत पसंद आ रही है क्योंकि उसका उनको इंतजार था। नीतू कपूर इसमें दादी

ये आ सकती है। बल इसके बारे में आधिकारिक कोई भी सूचना नहीं दी गई है नेटफ्लिक्स की तरफ से, बट अगर ये नेटफ्लिक्स पे होती है तो वी आर गोना टेल यू, और अगर ये किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे होती है तब भी वी आर गोना टेल यू, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड ये प्यारा सा गाना आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना आपको सुनाते हैं जो कि है 9वें नंबर का गाना, अब कॉकटेल 2 का गाना है। नाउ कॉकटेल 2 का पहला गाना मैं इस लिस्ट में प्ले करने वाली हूँ, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि इस लिस्ट को, इस आज के प्रोग्राम को डोमिनेट किया है, जी हाँ, कॉकटेल 2 के गानों ने। अब कॉकटेल 2 सिनेमा घरों को कितना डोमिनेट कर रही है वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, लेकिन पहले ये लिस्ट में कम से कम 4 गाने सिर्फ और सिर्फ कॉकटेल 2 के हैं, तो आप रेडी हो जाइए उनके लिए क्योंकि सारे के सारे गाने बहुत ही जबरदस्त हैं। बस वो जो बंधु गाना है ना, उसी से मैं थोड़ा सा ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुई हूँ, क्योंकि तुम ही हो बंधु जो है, जो ओरिजिनल जो पहली मूवी में है, वो एक ऑलरेडी बहुत ही फैंटास्टिक सॉन्ग है, और यहाँ पर उन्होंने इसके साथ ऐसा लगा कोई सस्ता सा कोरियोग्राफर हायर करके उसको अजीब सा जोक बना दिया है, बट अदर देन दैट आई थिंक ऑल द सॉन्ग्स आर रियली रियली गुड, एंड द मूवी आई एम नॉट गोना से एनीथिंग अबाउट द मूवी, बट द रिव्यूज आर गुड एंड आई वॉन्ट यू टू सी द मूवी, आई वॉन्ट यू टू वॉच द मूवी एंड लेट मी नो कैसी आपको लगी, बिकॉज आपका रिव्यू है बहुत ही ज्यादा कीमती।

दीपिका पादुकोण ने लगाई थी वो ये नहीं इग्नाइट कर पाए, ये लोगों का कहना है। जी हाँ, जिन्होंने मूवी देखी है। और अब मैं आपको बता दूं कि 100 करोड़ से ऊपर की कमाई मूवी ऑलरेडी कर चुकी है। एक हफ्ते में 100 करोड़ के ऊपर कमाई कर चुकी है। 150 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी है और इसमें है शाहिद कपूर, इसमें है कृति सेनन, इसमें है रश्मिका मंदाना। अब ऐसा कहा जा रहा है कि रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन वहीं पर कुछ अजीबो गरीब प्रैंक करने की सोचती है रश्मिका मंदाना और उनकी फ्रेंड कृति सेनन, और वो कहती है कि क्यों ना तुम मेरे बॉयफ्रेंड को लुभाने की कोशिश करो और फिर हम देखेंगे कि क्या वो सच में लुभता है या नहीं। सो दैट्स व्हाट हैपनिंग। कृति सेनन को लुभाते लुभाते वो कर तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए प्रैंक रही होती है, लेकिन उन्हें प्यार हो जाता है शाहिद कपूर से। लेकिन क्या शाहिद कपूर रश्मिका मंदाना को चुनेंगे या कृति सेनन को चुनेंगे, वी डोंट नो। अब आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा प्रैक्टिकली तुमने स्टोरी बता दिया। वेल, ये स्टोरी नहीं बताई है, स्टोरी में बहुत कुछ है, अभी टेंशन मत लीजिए आप। स्टोरी में बहुत कुछ है, बता देंगे इसकी, मैंने आपको इसका थोड़ा सा ऊपर ऊपर वाला जो पार्ट है वो मैंने बता दिया, सो दैट यू विल बी प्रिपेयर्ड कि इसमें क्या है। जी हाँ, बट ऑफकोर्स सबसे बड़ी बात यह है कि मिलते किसको है, शाहिद कपूर आखिरकार जाते किसकी झोली में। सो लेट्स सी, यहां पर आप देखिए मूवी और फिर आप खुद बताइए कैसी लगी। इसी के साथ अब अगला गाना जो कि है खासियत चांद मेरा दिल का, जो कि है म्यूजिकल जिसमें अनन्या पांडे और लक्ष्य सेन है। और या म्यूजिकल्स के लिए पिछला वाला साल ज्यादा अच्छा था, ये वाला उतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये वाली म्यूजिकल उतनी अच्छी नहीं चली है, आई एम टेलिंग यू। जी हाँ,

जी दोस्तों, तो कह दिया जाए कि ये मूवी हिट है, ये सही होगा। वेल, रिव्यूज के मामले में ऑफकोर्स कॉकटेल जो है वो एक लेजेंडरी मूवी है। जैसे मैंने पहले कहा था, अगेन फिर से कहूंगी कि जो फायर सैफ अली खान, डियाना पेंटी और दीपिका

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आज निविया के साथ, और हम अपने इस प्रोग्राम में आपको बढ़िया बढ़िया मजेदार से गाने सुना रहे हैं। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली हमारे प्रोग्राम को सुनते सुनते आप क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हो। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर आप प्यारी सी जगह पर बैठे हो, मतलब थोड़े कोजी होके बैठे हो और कुछ खाने के लिए है, तो हमारा प्रोग्राम और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। जी आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, हम सोच ही रहे थे कि तुम खाने पे आओगी कब। मतलब हम यही सोच रहे थे कि कब ये लड़की खाने पे आएगी। ठीक है, मैं आ गई, आपने सोचा मैं आ गई, तो मैंने बता दिया है कि हमारे प्रोग्राम को एंजॉय करने का अच्छा सा तरीका क्या है। मस्त सा कुछ यमी सा खाइए और कोजी कोजी होके रहिए और साथ में इसको सुनिए। जी हाँ, तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारी लिस्ट में आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना हम आपको सुनाते हैं। और इस गाने की बात अगर मैं करूं तो जो मूवी है, जिस मूवी का ये गाना है, वो भी फ्लॉप हो गई है। जी हाँ, सो जितने में ये बनी थी, ये अपना बजट भी पूरा नहीं कर पाई, मतलब प्रॉफिट तो छोड़िए, अपना बजट भी पूरा नहीं कर पाई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये मूवी अच्छी है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्टर्स है वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, क्योंकि 12th फेल वाली एक्ट्रेस है और लैला मजनू वाले एक्टर हैं इसमें। अब क्या है माजरा, वो आपको तभी पता चलेगा अगर आपने इन दो जो मूवी का नाम लिया, अगर आपने वो देखी होंगी। सो ये मूवी का नाम है गिन्नी वेड सनी 2, और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ Amazon Prime खोलने की जरूरत है और वहां पे आपको ये मूवी मिलने वाली है। सो Amazon Prime पे आप इस मूवी को देख सकते हैं, और उसी मूवी का ये गाना है जिसका नाम बहुत ही खूबसूरत है, और ये गाना भी खुद में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। गाने का नाम है तुम पे ही प्यार आ गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? मतलब देखा तो बहुत सारे लोगों को, पर प्यार तुम पे ही आ गया, तुम पे ही प्यार आ गया। फिर क्या था, फिर बाकी की कहानी तो आप सबको पता ही है। जी हाँ।

जी हाँ दोस्तों, तो अब सैटरडे है यानी कि वीकेंड है, तो सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि वीकेंड पे आप कर क्या सकते हो, आई मीन व्हेन इट कम्स टू मूवीज। जी हाँ, मूवीज आप कौन कौन सी देख सकते हो, दैट टू थिएटर में जाके। सो क्या नया रिलीज हुआ है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे, और जो ऑलरेडी रिलीज है पिछले 2-3 हफ्तों से उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले होगी नए के बारे में बात, फिर जाएंगे पुराने की तरफ। सो सबसे पहले है वेलकम टू द जंगल। जी हाँ, वेलकम टू द जंगल वही मूवी है जो कि वेलकम का तीसरा पार्ट है। जी हाँ, पहले वेलकम आई थी जिसमें कैटरीना कैफ थी और अक्षय कुमार थे, वो उच्चल लंबक का एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, उसी के बारे में बात कर रही हूं मैं। उसके बाद वेलकम टू आई थी और अब वेलकम थ्री यानी कि वेलकम टू द जंगल आ गई है, और इसमें भी बहुत सारे लोग हैं। मैंने इसे बहुत सारे लोग, आप इसका ट्रेलर देखिए आपको खुद पता चल जाएगा, ऐसा कोई एक्टर नहीं है बॉलीवुड का जो आपको इसमें दिखेगा नहीं। यू विल बी लाइक ओके, बट इसमें कास्ट मेंबर्स कितने हैं, क्योंकि आपका सर चकरा जाएगा नाम गिनते गिनते। और नॉट कोई ऐसे ही, मतलब नॉर्मल से कैरेक्टर्स नहीं, नॉर्मल से एक्टर्स नहीं, मतलब सब फेमस एक्टर्स। तो इतने सारे एक्टर्स को इन्होंने ले लिया, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे इन्होंने इन्हें मैनेज किया था। तो आइए आपको बताती हूँ थोड़ा सा कि कौन कौन है इसमें, क्योंकि आप थोड़ा फनी है तो मैं ऑफकोर्स फन तो यहाँ पे पैदा करना पड़ेगा, राइट। सो अक्षय कुमार है सबसे पहले, तो सुनील शेट्टी हैं, दिशा पाटनी है, जैकलिन फर्नांडिस है, अर्शद वारसी हैं, तुषार कपूर हैं, राजपाल यादव हैं, परेश रावल हैं, श्रेयस तलपड़े हैं, जॉनी लीवर हैं, दिलेर मेहंदी है, रवीना टंडन है, फरीदा जलाल भी है, आफताब शिवदसानी है, जैकी श्रॉफ है, उर्वशी राउटेला भी है, और तो और लारा दत्ता भी है, और बिंदु धारा सिंह भी है। लिटरली इतने सारे लोग, एंड ऑल आर लाइक गजब के एक्टर्स। उसके अलावा भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, लेकिन इनके लेवल के हिसाब से थोड़े से वो कम बड़े एक्टर है। बट द थिंग इज कि इतने सारे एक्टर्स को इन्होंने कैसे मैनेज किया मुझे नहीं पता। वेलकम टू द जंगल में आपका पैसा पूरी तरह से वसूल होने वाला है, क्योंकि अगर आपको मूवी नहीं भी पसंद आएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह वाह वाह वाह क्या बात है, इतने सारे एक्टर्स इतने से पैसे में मिलकर देखने को और क्या चाहिए, राइट। सो मूवी कैसे भी हो पैसा वसूल जरूर हो जाएगा, क्योंकि एक्टर्स बहुत सारे हैं और वेलकम टू द जंगल हो चुकी है रिलीज। इसी के साथ अगर आप पंजाबी मूवीज देखते हैं तो कैरी ऑन जट्टा 4 इज हेयर। जी हाँ, ऑल्दो इसमें मेरे फेवरेट कैरेक्टर नहीं है, एंड यू नो किसके बारे में मैं बात कर रही हूं, अगर आपने मूवी देखी तो आपको पता होगा, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है और इसलिए वो इस मूवी में भी नहीं है, अदरवाइज उनके बिना ये मूवी बनना मुश्किल था। सो या, बट द थिंग इज कि यहां पर जबरदस्त जो है ये मूवी है, और ये बहुत ही गजब की फ्रेंचाइज है। मतलब ये जब पहली मूवी आई थी तब से ही बहुत ज्यादा हिट हुई थी, अब तो इसका 4th पार्ट भी आ गया है। सो ये दो मूवीज जो है वो नई रिलीज हुई हैं। इसके अलावा जो कुछ मूवीज हैं जो कि पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते रिलीज हुई हैं, वी आर गोना टॉक अबाउट दैट टू, पर पहले हम आपको सुनाएंगे एक और जबरदस्त सा गाना।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निवा के साथ। और दोस्तों, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ वीकेंड पे आता है, तो ये स्पेशल है और हम आपको और स्पेशल फील करवाने आ गए स्पेशल प्रोग्राम के साथ। तो अब आधी लिस्ट तो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब प्रोग्राम में जो आधी लिस्ट के जो गाने थे, मतलब 5 गाने हम आपको सुना चुके हैं। अब बचे हुए 5 है जो कि लिटरली आपको टॉप और नंबर 2 और नंबर 1 गानों की तरफ लेकर जाएंगे। आइए जरा उसी के बारे में बात करते हैं, और साथ में पहले बात करते हैं जो मैं आपको पहले ही बता रही थी, मतलब आप क्या क्या अपने नजदीकी सिनेमाघरों में देख सकते हो बड़े पर्दे पर। सो यहां पर जो मूवी है जो कि काफी अच्छी चल रही है, बवाल मचाए हुए, ऑल्दो अगर कंपेयर करें पुरानी वाली और पहली वाली से तो ऑफकोर्स छोटी पड़ जाएगी, बट उसके अलावा कॉकटेल 2 जो है वो अच्छा काम कर रही है, क्योंकि 100 करोड़ के ऊपर जो है वो कमाई कर चुकी है अपने पहले ही हफ्ते में, और काफी स्ट्रांग जो है ये जा रही है। ऑल्दो 150 करोड़ के हेफ्टी बजट में ये मूवी बनी हुई थी। इसमें शाहिद कपूर है, इसमें रश्मिका मंदाना है, और इसमें कृति सेनन है। वेल, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, सो या यू कैन वॉच इट एंड यू कैन लेट मी नो आपको कैसी लगी। ऑफ कोर्स ये 18 प्लस है, सो आप देखिए कि कैसे आपको जाना है, क्योंकि आप इसमें बच्चों के साथ नहीं देख सकते हो। इसके अलावा एक और मूवी है जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, जो उससे भी पहले हफ्ते में रिलीज हुई थी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मैं वापस आऊंगा। सो आई गेस जितने भी मूवीज अभी थिएटर में लगी हुई हैं, इसके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है, और इनफैक्ट इसे 8.9 रेटिंग भी मिली है 10 में से, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मैं वापस आऊंगा। इसमें दिलजीत दोसांझ है, इसमें वेदांग रैना है, इसमें शर्वरी बाग है, और ये स्टोरी है एक लव स्टोरी जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से चल रही थी, लेकिन फिर हो जाता है पार्टीशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, और ये दो लोग जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे वो बिछड़ जाते हैं, लेकिन बिछड़ने के बाद भी बुढ़ापे में वो अपने प्यार को नहीं भूल पाए हैं, और बुढ़ापे में उसमें से एक जो व्यक्ति है जो हीरो है, उनकी फैमिली से कोई जाता है पाकिस्तान की तरफ, और फिर देखता है क्या हुआ है उनकी उस मोहब्बत के साथ, कैसी उनकी मोहब्बत की लाइफ जो है वो चल रही है, मतलब जिस लड़की से वो मोहब्बत करते थे उनके दादाजी, वो कैसा जो है वो अब जिंदगी जी रही है भी या नहीं है, वो सब देखने जाएंगे। एंड दिलजीत दोसांझ वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वेदांग रैना और शर्वरी बाग वो उस कपल का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक दूसरे से प्यार में है, लेकिन प्यार को क्या ही मंजूर था। जी हाँ, ऑफकोर्स यहां पर ये मूवी जो है इसके बारे में बहुत सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं, और यहां पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप बिना आंसू बहाए तो बाहर नहीं आ सकते थिएटर से। एंड ये क्यों कहा जा रहा है, वेल, ये तो आप मूवी देखोगे तभी पता चलेगा, बट या इट्स अ गुड मूवी, दैट्स व्हाट आई कैन से। और इम्तियाज अली की मूवी है, AR रहमान का म्यूजिक है, सो या इट इज अ ट्रीट फॉर योर आईज। इसी के साथ यहां पर एक और मूवी जो आप देख सकते हैं वो है कौन सी मूवी, गेस करना चाहते हैं आप? कीजिए कीजिए, जी हाँ कीजिए। और ये है मूवी जिसका नाम है हॉन्टेड एकोज ऑफ द पास्ट। सो ये है हिंदी मूवी नहीं है एग्जैक्टली, बट हिंदी है क्योंकि आप इसे हिंदी में देख सकते हो। इट्स अ इंडियन मूवी बट इट्स अ हॉरर मूवी। अगर आप हॉरर के फैन हो गो फॉर इट, लेट मी नो आपको कैसी लगी। बट अच्छे रिव्यूज इसके बारे में आ रहे हैं ये मैं कह सकती हूँ, उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं जितना कि मैं ज्यादा अच्छे से इसके बारे में ब्रैग कर पाऊं, ज्यादा तारीफ कर पाऊं। बट हाँ अच्छे रिव्यूज हैं। हॉरर मूवीज अगर आपको पसंद है तो दिस कैन बी योर चॉइस। इसके अलावा अब बढ़ते हैं सीधा हॉलीवुड मूवीज की तरफ, लेकिन पहले आपको सुनाएंगे तू ही दिसदा, और ये है गाना खूबसूरत सा भूत बंगला का। बाय द वे भूत बंगला नेटफ्लिक्स पर आ गई, आप उसे देख सकते हैं। इसमें है अक्षय कुमार एंड वामिका गाबी।

जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ ये खूबसूरत सा गाना आपने सुना। आप अगर मूवी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये गाना कहाँ पर आएगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट भूत बंगला। इट्स अ हॉरर कॉमेडी एंड इट्स अ गुड वन टाइम वॉच मूवी। यू कैन लिटरली वॉच इट विद योर किड्स। जी हाँ, फैमिली के साथ आप इसे देख सकते हो। इट्स अ फैमिली मूवी। डर लगेगा लेकिन डर से ज्यादा हंसी आएगी, आई कैन अश्योर यू। इसी के साथ अब मैं आपको बता रही थी जैसे कि क्या क्या आप नजदीकी सिनेमा घरों में देख सकते हो। मैंने आपको हिंदी मूवीज के बारे में, बॉलीवुड मूवीज के बारे में बता दिया, जो पहले रिलीज हुई, जो अभी पिछले हफ्ते हुई और जो आज हुई या पिछले कल हुई, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जरा हॉलीवुड मूवीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बैकरूम। जी हाँ, बैकरूम्स कैन बी योर चॉइस। इट्स अ हॉलीवुड मूवी एंड इट्स अ हॉरर मूवी। जी हाँ, और ये क्यों है हॉरर? वेल, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसका ट्रेलर देखेंगे। इट्स अ हॉरर साइफाई मूवी एंड ऑफकोर्स इट्स अडल्ट मूवी। यू कांट वॉच इट विद योर किड्स, सो या वॉच अकॉर्डिंगली। इसी के साथ यहां पर एक और मूवी है जो कि आप अपने बच्चों के साथ देख सकते हो। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा सारी मूवीज के साथ में तुम ये बोल देती हो कि बच्चों के साथ नहीं देख सकते, बच्चों के साथ नहीं देख सकते, तो देख क्या सकते हैं बच्चों के साथ? चलिए बता तो रही हूं आपको क्या देख सकते हैं बच्चों के साथ। आप देख सकते हैं टॉय स्टोरी 5। टॉय स्टोरी 5 इज द मूवी जो कि आपको काफी पसंद आएगी, लेकिन मैं कहूंगी कि आप बाकी पार्ट्स भी देखिए इसके, क्योंकि 5 से आपको पता चल गया होगा कि इसके और भी पार्ट्स हैं एंड यू आर गोना लव इट। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप अगर पेरेंट है तो आपने मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी को देखा होगा। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मूवी, एनिमेटेड, फनी एंड यू नो वॉट, एवरीथिंग अबाउट दिस मूवी इज गुड, ग्रेट। यू आर गोना लव इट, योर किड्स आर गोना लव इट, सो गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। सो ये सारी की सारी मूवीज आप देख सकते हैं। और अगर आपने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर नहीं देखा है अभी तक, तो वो भी देख डालिए क्योंकि जल्द ही मूवी रिलीज होने वाली है। एंड आई मीन जल्द से ही, एक महीने में मूवी रिलीज होने वाली है, लेकिन इसकी प्री बुकिंग जो है वो ऑन हो गई है, मतलब आप बुक कर सकते हो इसके लिए। और या देखते हैं फिर कब ये मूवी आती है, कैसी होती है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है पहले ही। सो या ये कुछ मूवीज है जो आप देख सकते हो। लेट मी नो आपने कौन सी देखी और कौन सी देखने की आप प्लान कर रहे हो। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए फ्रॉम द मूवी, मैं वापस आऊंगा।

Cihan Usta o 18 saat ki pop cultural pop और classical I don't know what to say to this song but ये गाना सच में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और ये जो mashup है ना मतलब सारी tones mix की गई है मतलब classical pop और फिर एकदम से फिर से आपको एकदम सूफियाना माहौल में लेकर जाएगा और फिर से I mean this song is so so so good. चलिए इसी के साथ बंधु 2 की ओर जाते हैं जो कि मेरा least favorite song है इस पूरी list में because तुम ही हो बंधु पहली कॉकटेल का इतना जबरदस्त है कि आज भी मैं उस पर वाइब कर सकती हूँ बट ये क्या है उसकी सस्ती कॉपी आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा इतना भी क्या रोस्ट करना वेल करना पड़ेगा क्योंकि जब भी अच्छे गानों के साथ कुछ गड़बड़ करते हैं ना मुझे बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पे भी वही सिचुएशन है आप खुद ही देख लीजिए अभी आप सुनिए और उसके बाद आप देखिए वीडियो फिर आपको लगेगा वॉट इज हैपनिंग हियर सो यहाँ पर बंधु 2 सुनते हैं और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें

किसी के साथ कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर मैं एक मीम को देखती हूँ जिसको देखते ही मुझे इतनी ज्यादा हंसी आती है कि मैं लिटरली अपनी चेयर जिस पे मैं बैठी होती हूँ मैं ऑलमोस्ट गिर जाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज सो सो सो ट्रू। सो अगर आप लोगों ने भी ट्रैवल किया है कुछ दूसरी कंट्रीज में तो शायद आपको ये बात पता होगी, या फिर कुछ आपको भी अगर ऐसे पायलट्स मिले हों जो कि लिटरली क्या बोल रहे हैं, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, और आपको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो इतनी क्लियरली बोल नहीं रहे हैं और आपको डर भी लग रहा है क्योंकि ये पायलट है, और पायलट अगर कुछ बोल रहा है तो इट कैन बी वेरी सीरियस, इट कैन बी वेरी यू नो लाइट हार्टेड ऑल्सो। सो यहां पर लिखा कुछ ऐसा था कि वेन द पायलट स्टार्ट स्पीकिंग एंड यू हैव नो आइडिया इफ यू आर क्रैशिंग, लैंडिंग और गेटिंग ऑफर्ड प्रिंगल्स। जी हाँ, फिर से सुनिए, वेन द पायलट स्टार्ट स्पीकिंग एंड यू हैव नो आइडिया इफ यू आर क्रैशिंग, लैंडिंग और गेटिंग ऑफर्ड प्रिंगल्स, मतलब यू डोंट नो कि क्या हो रहा है, मतलब फ्लाइट क्रैश हो रही है, लैंड हो रही है, या आपको प्रिंगल्स मिलने वाले हैं जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। बट कुछ पायलट्स ऐसे होते हैं। सो या यू टेल मी अबाउट इट, कभी आपको भी ऐसे पायलट मिले जिन्होंने फ्लाइट पे बोला हो और आपको लगा हो कि क्या बोल रहा है ये इंसान, ये कौन सी महाराष्ट्रियन, कौन सी तमिल बोल रही है। जी हाँ, तो बताइएगा जरूर इसी के साथ। अब एक और गाना जो कि दूसरे नंबर का गाना है जो कि मस्कारा है, एंड आई हैव टू से ये गाना मुझे बहुत पसंद है। सो या मुझे ही नहीं सबको पसंद है, मस्कारा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, मतलब ये प्रोग्राम खत्म होने वाला है और होने जा रहा है मतलब, और ये लास्ट सॉन्ग हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं। लेकिन मैं इतना ही आपको कहूंगी कि हम बहुत मजे से आपके लिए ये प्रोग्राम लाते हैं। या ये थोड़ी सी झलक थी जो नंबर वन गाना होने वाला है, तो आप गेस कर सकते हैं क्या? जी हाँ, कीजिए, क्योंकि अभी मैं प्ले करने ही वाली हूँ। सो या हम बहुत ही प्यार से आपके लिए प्रोग्राम लेते हैं और आप बहुत ही प्यार से सुनते हो, एंड दैट्स ऑल वी वांट। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा ये प्रोग्राम सुनने के लिए और अपनी प्यारी सी कंपनी के लिए। एंड आई होप आपका वीकेंड बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही मजेदार जाए और आप कुछ अच्छा अच्छा अपने इस वीकेंड में करो। दैट्स अबाउट इट, एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। और ये लास्ट सॉन्ग, नंबर वन सॉन्ग, माशुका, या द सॉन्ग इज माशुका फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2। This song is just way too passionate.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
4: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानु लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानु फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT, यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।